जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया नैन नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में बूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल पाद संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक।

कारण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थाप उथाप दार सिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ दर्भ।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

अजल लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल गया लाल न

नच भोग रसमिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दात मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विध

रसना उचरंत नामं शरणं सुनंत सबद अमृते नानक तिन सद

जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय के मनीष पुजाई वडे भाव सत्संग हो।

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

भोजन भिखम असदाम गुरु बोते तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी।

ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको धोखा तो कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप

हर कथा हर जस साज संगत स्यो एक मोहत ना ए मन लायो विकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इसनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन कोख्यो ने बूझियो अपनायो पर उपकार ना कबहू किए नहीं संत गुर सेव ते आयो पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो।

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभु संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पाव दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गाओ आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे सही ए तृप्त है आन न कथमूतावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मा

मांगो दान ठाकुर नाम और कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम तोड़ी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगारे।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रह इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। पव जल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रपै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले। बिन से सोग संग

दयाकारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप, रोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये, माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

लपियो रे मूड़े कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके गृह में आया, तोड़ी महला पंजवा कर चौथा। दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहं रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अनंत चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान रहाओ, खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभु मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ, दह दिस रव रहा जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते, से जन कभो न मरते चूर। कंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग।

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विघ्न नाश, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी विमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सरन।

तार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्व न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ में।

पासों रुच उपजाई दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई सह नानक अब नाही अनत गत बिन हर की शरणाई। टोडी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर कांगरे बकबाद लायो जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ। पंडित होय के देख बखाने मूरख नाम जो राम जाने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई। पनक नाम देव

कुम्हार के कर हांडी अच्छे, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणे के कर हींग अच्छे, पैसर माथे सींग गो, देवल

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा। रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर प्याय सुखदाता जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित प्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत हो।

हंस जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला त्यागड़िए मानड़ा काए।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साए साचा केले सब हरतनी साला है सच सब ऊपर हरतनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित नावे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजिक जाए अजराइल या

सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना, तिन विचो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले, कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो।

या से आप हर पाया हर गर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे किन दर्शन दीजे हम किन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जाए पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर के प्या रंग रलिया माने सतगुर दाता आपिए उस परे पसाओ है गुर वित्तो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वल दाने हो सतगुर को सब

हर गुण काहे न गावे मूरख अज्ञाना तूखे लालच लाग चैन मरन पछाना अजहू कछ बिगड़ो।

जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफिल सोया जो तने उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेब इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

तार क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हो बल बल जाओ नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ कुजा आमद कुजा रफ्ती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पत गजपत नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशल कामा रहाओ। ए मन की हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित सत्सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल कल मैयल रव रहा।

आई है। सतगुरु पोते का कैसा टूट है, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सब तुन लागे, करनी परचा पाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत की उपाई है, नानक जीव क्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुनजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माही निरंजन रही है, जोग जुगत का उपाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कहते है दीखिया लेवा, कहते है मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मई।

कतहू की तरसो सो टोली इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना वे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, कौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब दी, हर अस्तुर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर दंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद कुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत्संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुआई।

बाहर देख बहुत चतुराई मनवा दे विस्तावे होमे दिया प्या सबना चीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूझे सोजन नाम ते आए गुर प्रसाद जी एको बूझे एक समाए समाए सूही महला चौथा कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाए हर हर नाम पदार्थ पाई मेरे मन हर हर शांत बसाई कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई हो हर प्रव प्यारा तू चुड़ाई सत्संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुख

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जीवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सह समाए। हर रस जन चाको जे पाई, तौ कत अनत साध लोभाई। रहाओ गुरमत रस रासो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाक्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकत कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रवदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इक गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत।

ना साको तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम कर सोई ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब, मैं कुछ बिन अवर ना कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं खुद आ गया अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच काश अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने आमान दिवाए। जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, क्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किश आपे जाने, क्या तुझ पे आप सुनाइए। बुरा पला तुझ सब किश तू जाए, जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुझ सब किश तू जाए, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस भगत आए। इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मन मुख तंद पिटाए। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जे ही तू नदर करे केहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुदनो नित त्याए। जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। तुई महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुकत पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय, गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर हर।

कर सकिए, अपना कीता किसी ना होवे, जो हर पावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साकें, जो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कारे लाया, जिहा तू हुक्म करे तेहे तो कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिस्ट सब साजी, कोई छेवा करो जे किसीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद।

जल फल मैयल रे आपरपूर, निकट वस्ते नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो में जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने।

माने हुकम तजे अभिमान तैसो राती रलिया माने सुन सकिए प्रम मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सकी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहे।

सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुणकंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंकरी।

मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रवताई खोज चरयो देखो प्रह जाई सुन सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे फिर बोलंता कई निराशी बहुत दिन लागे देश दिसंतर में सगले चागे किन रह न पावो बिन पग पागे होए कृपाल सब मिले सवागे पयो कृपाल सत्संग मिलाया बूझी सब तरह फिर पाया सगल सिगार हूं मुझे सुहाया कहो नानक गुरु परम चुकाया जय देखा तह फिर है पाई खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन तरसे चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गिर।

कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड़ियाई, तुम सुखदासे पुरुष सुभाई। रहाओ दूजा सुई महला पंजवा, बुरे काम को ऊट खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिखे नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जय। कर कृपा मोहे साथ संग दी जय, तो किस पाये जो हो ये रे ना। जिसे बुझाए किस नाम लेना, सुई महला पंजवा। कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे। परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमुख मिलावो मोए प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सोहा।

मैं खरीद हूँ दासरो तेरा, तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा, कोट दास जा कै दरबारे, निमक निमक वसे तिस नाले, हौ किछ नाही सब किछ तेरा, ओत पोत नानक संग बसेरा, तू ही महला पंजवा, सूक मैल जाके ऊंच द्वारे, तामे वासे भगत प्यारे, सहज कथा प्रभ की अतली थी, विरले काहू नेत्रों दी थी, रहाओ चह गीत नाद अखारे संगा, ऊहा संत करे हर रंगा, चह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, दोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी, सूही मैला पंजवा, जा के दर्श पाप कोट उतारे, पेट संग ए पवजल तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे, रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे, जा की तैल जमदूत बिदारे, जा की तीरथ इस मने सुधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक

कृपा निधान नानक को करो दात, नाम तेरा जपी दिन रात, तुही महला पंजवा। कट कट अंतर तुम्हें बसारे, सगल समगरी सूत तुम्हारे, तू प्रीतम तू प्राण आधारे, तुम ही पेक पेक मन विसारे, रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे, ओट नहीं अब साथ संगारे, अगम अगोचर अलखा पारे, नानक सिमरै दिन रह नारे, सुही महला पंजवा। कवन काज माया वड्याई, जा को बिन सतबार न काई, ए सुखना सोत नहीं जाने।

जा कै सिमरन कछ पौ न व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सुही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी। रहाओ सात संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी। काम क्रोध लोभ मोह तजारी।

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची देह मानुष अभिमानी स्वाद बाद ईर्ख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो कित कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुटीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता ना

कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा। गुर परमेश्वर करणे हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पल जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा।

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जनता की, जन्म जन्म के

कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा दीन छदाए, दुनी जो लाए, दोही सराई खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तोसे दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच साए।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे नानक मांगे दान।

अब गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद दे पाज दिन

करण पोखण संग औद्विहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साप संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप जायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई है। पूरब लिप्त हुए ताँ पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संतर वाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूठे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तेरा से, राम रसायन अंगिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण वंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। कर पूजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा अवर न कोई, आपे थमे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तू ही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब।

जस दया न पाए, अनेक जन्म बीतने परमाए, कर वास न देवे दुतरमाए, दिन रैन अपना किया पाए, किस दोष न दीजे किर्त पवाए, सुन साजन सा

काम न तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इह बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुखमन संतो खाए ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर विद्या जे रच लो भाए सब किस तुम रह हाँ।

में आई। पद अभिमान सरणी परो हर गुण निध पाए, अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार, अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार, कितवो मन आशा करो जन का।

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया, रहा निर्गुण हरिया सरगुण करिया, अन कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहा आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहुविद क्रिया पर कोहिरिया, दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया। सुही महला पंजवा, रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविद रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन साथ साथ गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद पियाई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हौ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। राव वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन केट्यो।

निमुख सिमरत जित छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुर प्रकादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, इस कल में महल परी जय। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर्षियों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतंते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सबते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय, तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह ध्यानी कृपा करो प्रभ करने हारे तेरी बस निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याये तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से ए आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाए के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुखला।

सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाए।

पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरण सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास करी।

दर्शन को बल जाई, अमृत वचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी, तुझ जेवड़ अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई। दो कर जोड़ मां

तेरे सेवक को पोक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम से आयन सुख फल पायन।

प्याइए गुर प्रसाद पाव करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्यायो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहाओ सहसीदार कामन कर आवे पांच सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाए।

गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लाहा तारे आने, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आप थाप थाप शब्द निवाजिया देही पसंद रुलाए न जाती कह गया आपे रह समाए सो विस्माद कया ऊना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेख हदूर।

सदगुरु नाम ना जाते, गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे, गुरमुख हो वे ता एको जाने, हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रे समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे, जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारे, माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है होमे विच्चों जाए, आपके दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जम काल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कौन चढ़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, असर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह पूरे गुर से पाए। तन मन सब किच हर किसकेरा गुरमत कह न जाए, हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अगन बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे, सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरत है गुरमुख कोई जाने है जमन मरना हुक्मो वरत है गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का सबद समाले हर की भगत सदा रंग

काया अंदर सब किछु वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाये, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाये, मोल कित ही नाम पाये, नाही नाम पाये गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या तो करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसाद।

काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी लोका ना साला है जो मर खाक थी वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पवन ये मन जैसा सेवे तैसा होवे ते ही कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए मां पुरखा का बोलना होवे किते परखाए कोई अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ पागी जे

मन मुख मन ना पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास हच बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सों लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई

जो सच्चा सेवन अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत तरेन सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन सोयना रूपा पाप कर कर संची है चले ना चल दिया नाल विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभै नाल मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमति सत्याए हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर स्यों रह समाए सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए कामन रंग ता चढ़े जा फिर कै अंक समाए चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यो केल किरन सज्जन मिले ना विछड़े जे अंजन मिले रहन इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित विद मिलिया जाए गुर कै शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हों तिनके बलिहारणे मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाणा मन लेन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान गुर पूरै वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय गुर प्रसादी मन वसै तित कट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा कला चिचर आखदा जिचर है दो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाय समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा हम किसके आप विचाई दर्शन हर देखन कहताए कृपा करें ता सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे भुख देहे ताई ती राजा दुख भी सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाई नानक गरीब कह पया दुआर है हर मेल लहो वड्याई अखी काड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई जे पास बहा लेता तुझे अरादी जे मार कढे भी त्याई जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई जे तुद वल रह ता कोई किहो आखों तुद विसरे मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई
समुद्र सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाए। जो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाए। जो धरती सोब करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई।

आए। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैद रखाए। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कत्तर वर्फ वर्षे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जब तत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंदारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद के वस्तर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियान उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल हो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक त्याए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवरना कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया कारनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित्र।

नाम से आवे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया दरगे पैदा जाए जियो। ऐखे सुख मुख उजला इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। खान समंतर रव रया सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचया एक नाम धन माल जियो। मन से कबो न विसर जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत न पाइए ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसर सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्व में तू है बुद्ध विवेक जियो। नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा अष्टपदियां।

से वाडिया हौना छोड़ो कंठ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा हिरो महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासु से तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मुदातरी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंद पाओ नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां।

तोहो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुणगा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुचजी ओंकार सतगुर प्रसाद। मंज कुचजी अमावन दोसड़े, हों क्यों सो रावण जाओ जियो। एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सखी सोहरावया से अंबी छावड़ी है जियो। से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो। इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको, तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो। पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो। पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो। पाणे सोह पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तै पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो। सुही महला पंजवा गुणवंती जोदी सह गुर सिखड़ा तिस निव निवला गो पाए जियो। आखा बिरथा जी की
गुर सज्जन देह मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हौ आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हौ रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव लाग।

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमत पहुँच समाए। राव सुही महला पहला, संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया अंदिन मेल पया मन मानिया कर्म अंदर सोहाए पंच शब्द तुम अनहद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तब पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मंथन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सतलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए काल विकाल पै देवाने मन राखिया गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए राग सूही महला पहला करती जा।

और आप न लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुबाई नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

पुरुष विदाते तस्तर मार वसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रभु दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवान पत मत पूरी पूरा परवाना ना वे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुई छंक महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंगड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया हो रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वै वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मलिए जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत पी जय गुना कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखी है होर करे न कोई आखनता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप करता क्यों फुले सुने देखे बाद कहे है दान सन मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नान का सच सोई आप करे किस आखी है होर करे ना कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार था के कूर कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सालाही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैं ले किने अमृत पिया मत अमृत पिया ए मन दिया गुर कह मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच को नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारया हम अवगणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना नाची है साची मत होई अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे सूझे जाऊं।

हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली, दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेतिये सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

कोई ताकी कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न फुले जय जयकार करे तुझ पावे गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही।

सोहेला हर त्याव, गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्याव, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलहारी गुर अपने बिट्टों जिनकारे सब सवारे, हर प्रभु कृपा करे हर जापो, सुख फल हर जन पावो, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावो।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा, साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई, हर गुण गाए सदा तृप्त पासी, फिर भूख न लागे आए, जय जिस पूज हो वे हर जन की, जो हर हर नाम से आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे कर माही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राखे, जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे, हौ मैं सबद जलाया राम, हौ मैं सबद जलाया, मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल, नाम सच्चा वन भाया, नानक भगत सोए दर साचे, जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात सत है, भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे, जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने, पै भगत मीठी लागी, अम जिन भगत करे दिन राती, कर ही मैं बैरागी, पगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर साचे, अम दिन नाम संभाले।

मर जन में दुख होई दूजे पाए परज भी गोई विन गुर तत न जानिया भगत भी होना सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई।

काल कंटक मार समाने हर मन पाने नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम खुटे हर दिया सह सुहाया हर जन ऊंचे सभी ऊंचे गुर के सब सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोगा पाया सुही महला तीजा सब सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हों मैं सब किलब काटे सात रखिया उधारे राम सत रखिया उधारे दुत्तर तारे फिर फल जल करण न होई सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी जिन सच बिठा लिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुरु साच बुझाया पत राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए हम दिन सच प्यायन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे।

बोले जो सच करे सो होई, जय देखा ते सच पसरिया और न दूजा कोई। सच्चे उपजाए सच समावे, मर्जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता।

सच्चा सबद सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

आए राम अंगद शब्द बजाए हर जियो कार्य आए हर गुण गावो नारी अंजन पंक्त करे गुर आगे साथन कंत प्यारी गुर का शब्द वस्या कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नाम तिन कर सभी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम गुरमुखे मन निर्मल होआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसिया सही जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी।

बहु कृपा तारी हर कै सब सुभाए राम मिल सब सुभाए आप गवाए रंग सोरलिया माने शेष खाली जा प्रभ पाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जो चले सतगुरु भाए।

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम, गुर सेवन सत गुरदाता हर हर नाम समाया राम, हर तूर देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन कके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर सीजनी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुंगाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक पाग जियो।

गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ

खास शब्द विलाई अंजन सहज रहे रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब में रव रहा।

समावै पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिवलावै मत परगास पई मन मानिया राम नाम वडिआई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सूरी महला चौथा हर पंजवां।

हौ मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वड पागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा पुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावे पच पच मोया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया।

देव ठाकुर नाथ पराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाई है पागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जाए संत ना की जाए गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमा।

ते पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस पेटिया गुरपुरा, नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान, महत सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभु पुरख करने हारे। उपजया तत् ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

रावण लागे, हर रंग अंजन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नाशे, रहस्य उपजय मन

तू वरदाना कर मेरा मत साई कृपा की जय सौ मत दी जय हाथ पैर तू त्याई गर्भ ना की जय रेण होवी जय तांगत जी रे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कण चेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम फिर हम दोरिया राम तुम वडे वडे वड ऊंचे हो इतनीक लोहरिया राम हो किछ नाही एको तू है आते आप सुजाना अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरनी दास है दासी मन मोले तन हरिया नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर मेरा है माना तू है मेरा ताना राम सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन मुख फूली बहुती राही फाती माया फंदे

तू पर्वत मेरा ओला राम है बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे विकारे ठाकुर स्यो मन माना प्रभु जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हौं निरपो होई सो प्रभु मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पौना राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकि शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहारे नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरवड कागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी नाइये प्रभु ते आइये बाहर जोन ना आइये गुर चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाइये हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापे नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापे हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन्ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिया है मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जम पंख सा दे दूख ना व्यापे कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक को प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सह सियाना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पाव सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पाव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारंग गोपाला सब किछु तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा।
सुही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप सजावे राम हर जो गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा अचल नींव रखाई जन नानक प्रभ कहे दयाला सर्व कला बनियाई आनंदा वजह नितवाजे कार ब्रह्म मम उठाराम गुरुमुखे सच करनी सारी बिन से प्रम पैच उठाराम अनहद बाणी गुरुमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा काठा कारज आया राशि राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याय साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्प पल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिय जियो पिंड जिन तारया सुही महला पंजवा तै सागरो तै सागर तरया हर हर नाम त्याय राम बोछड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहुत न मरिय चूके आवन जाना जो किछ करे सोई फल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कब होना जाए सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे नित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोभावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही महला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया उत्पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम आराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम मासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद पवितन का राखा, सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर कृपाला। जय जय पूर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन, अनहद बाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम आराधे मेल सब काटे, किलविक सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बोर न पाई है जोनी है, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनी है। सूही महला पंजवा, संता के कारज आज खलोया, हर काम करावन आया राम, तरत सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते, तोत ना आवे काई राम। खास खर्चक दिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठना थे, दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूख सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे, सात संगत संग बनी, जिन उद्दम की आकाल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी, नानक सगद आधारा। गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तने अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल तकी जी, ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने। पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए, एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग छारा। प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस देवल अवर न कोई, आग अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया, पव जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। हर निमुख ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

कर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सूहै वेश बुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग सुध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवारे अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा आपे प्रताला श्लोक महला तीजा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई ऐन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीत सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सुहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद एआणी दुमणी सू है वेश लुभाए सब सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सू है वेश पावन कुलखणी जो प्रव छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सुहावे सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेय सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सुहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच तात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पो आइए मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियों ने हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा वेश छड़ तू कातिर लगी प्यार सुहे वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार सतगुर मिले सुहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सुहा परहरो लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुर शब्दी विचार मुंड सुहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन
सेवन साई आपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंका नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरो ही सज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख कर तै लिखिया नावे जेवड होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया।

रात कारण तन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चले, फिर पछतावा होए महला दूजा। बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार, महला दूजा। मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले, परस जिने सत पाव दे जन नानक शब्द विचारे। कौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाये करता करे सोई। श्लोक महला दूजा। जिना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दीवान गया। महला दूजा। तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता

सच आयन से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी ये तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तो नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार से तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग स्यों होमे तिसना मार मन का निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आपाहो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत् कमाहो मस्कत लहू मजूरिया मंग मन खसम धराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

नाले मिली कलाण, एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान। नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है, कूड़ो हो गया हों मैं। झगड़ा पायोन झगड़े जग मोया, गुरमुख झगड़ चुकायोन इको रब रहा। सब आत्म राम पछाणिया पौदल तर गया, जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला। सतगुर पीछिया देह मैं तू समरस दार, हों मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार। लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार। एनस नव तन निर्मला मैला कबू न होए, नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए। मैला पहला। इको कंस सवाईया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया। मैला पहला। सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित, मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित। मैला पहला। हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात, सब राती सुहागनी इक मैं दुहागन रात। तौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर, गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर। अनहद शब्द बजाए ज्योति जोत पर, हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर। जग में वर्त आप हर से प्रीत।

मेला पहला सो उलाव में दिने के राती मिलन सहंस सिफत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस फिट इवे जीविया जित खाए वधाया पेट नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत पौड़ी ताड़ी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सलाहे कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम है गुर को वारिया तू आप सवार आप सृजन हारिया श्लोक महला पहला दीवा बले अंधेरा जाए वेद पाठ मक्का पा खाए उगवे सूर ना जापे चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पर पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर सुपार महला पहला शब्द साड़ ना आयो नाम ना लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पया किरत कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी जे प्रभ साला है अपना सो सो बा पाए ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਚ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੇਲ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਵਿਛੁਨਿਆ ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਮਨ ਮਹਿਲਾ ਇਵ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪ ਸੰਭਾਲ ਇਨੀ ਫੁੱਲੀ ਰੋ ਕਰੇ ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਐ ਡਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ नानक तिना बसंत है जिन कर वस्या कंत जिनके कंत दिशा पूरी से एनस फिरे जलंत पौड़ी आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी अंदिन सेवी गुण रवा मन सच्चे रचनी प्रभ मेरा बेअंत है अंत किने न लखनी सतगुर चरणी लगिया हर नाम नित जपनी जो इच्छा सो फल पाएसी सब करे विच जचनी श्लोक महला पहला पहल बसंत है आगमन पहला मौल्यो सोए जित मौल्य सब मौल्य तिसे न मौल्यो कोए महला दूजा पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार।

जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग ना साथी गवन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी सोही। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग के आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हार चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने सोही। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई, यह तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा, कर की नार उरे तन लागी, को तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिरे बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

सच में रहो रजाई रहाओ, जो किछ हुआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या सिकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन नानक।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी,

तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलख।

साधन चार नाम मिले चांदन ध्यान चक छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप सहवे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोय करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मन से माया ठाक रहे मन साचे पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम फुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह ना सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिया गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों मैं लेट चले गुर शब्द समाए मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहस्यों जित हुन खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न दे लिव लागण जिन हर के चरण सारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुरु का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोले आ जाए दूजा होए कौन सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवती लाए आपके परखे आप चलाए आपके तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब किसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा ले ता सच समाए आपके लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहत्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी सब कोई करो दिखाव खियाना आपे गुरु चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है जो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा इकना कर मैं देवड़ आई इक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ाई मत को करो गुमाना
सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौ जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा जुग जुग आपो अपना कर्म है सो

कह सुनत सबे सुख पावे मानत काहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए इत कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुवाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए। हर जियो आग बसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सब रंग आए। निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस आए। यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों में माया शब्द जलाई दर्शा तै गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसर वेख है बहु न मरे न जम पेख है। कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सह ज्ञान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई। जह देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का सब तक मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कौन कौन की गत नित कही है हर की ये पतित पवन्ना। ओ तो वै टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख पटना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा। कोई फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड कर्मा। गुर सत गुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे ज्यो संग पासत लोह तरा। साकत न होछी मत मदन जिन हर हर सेव न करा।
ते नार पाधीन बहुचारी होए जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा, दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मेला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करो, हर हर नाम बोहे थे कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो, मस्तक लिख लिखे गुण गाए, मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम, क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब दिख रसो। राम नाम रस राम रसायन, हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए, गुरमत नानक हर तजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे, हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार जम कर पूजो, नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी, जो इच्छो सोई फल पावो, हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनित उपाव चितवी है बहुत तेरे, सा हो वै जे बात हो वै नहीं। अपना भला सब कोई बात है, सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी, हम जंत तू पुरख जन तैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम, अम दिन अनद अनंदे। तरम राय की कान चुकाई, सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे, वड पागी गुर सतगुर पाया, गुण गाए परमानंदे। राव साकट मूड माया के बद्दिक, विच माया फिरें फिरंदे। कृष्णा जलत किर्त के बादे, जो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे, वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया, सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक, सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते, जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो, हर संत पगत पारनो।

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक के सगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संगत के अंचल लावो, क्यों करिए दिखिया संसार, सतगुरु बोहित पावे पार, रहाओ परम चुलारे माया दे, हर के पगत सदा फिर से, हर शोक से रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा, पाया वेड़ माया सर्प पुयंगा, हूँ मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिगार करे नहीं पावे, जहाँ होए कृपाल तो गुरु मिलावे, हूँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर कुसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल, जिन चाखिया तिस आया फाद, जो गूंगा मन में विस्माद, अनद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आज समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेवक अपनी लायो सेव, विघ्न न लागे जब अल्प वेव, करत पुनीत सही गुण गाए, दुर्त गया हर नाम से आए, रहाओ सबनी थाने रवे आप, आज जुगाद जाका वड प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाने उठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रभ पाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रम मेरे, अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे, मोय अनाथ तूरी शरण आई, कर कृपा हर चरण से आई, दया करो बसो मन आए, मोय निर्गुण लीजे लड़ लाए, रहाओ प्रभ चित आवे था कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ दसे, प्रभ का नाम मन पर आधार, विसरत नाम हो संसार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर विसरत सब काम मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, विसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कह कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्यान का बिरथियां प्यारे, राखन को तुम एक, रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूरत गुरदेव स्वामी, सब कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता,

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख न व्यापे। रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिकता न हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभु कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा। गुर का शब्द

ना रहाओ। अंधकूप से परगह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई मीता। चरण कमल सो लाई चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत। जल न बुझे हर हर गुण गावत रहा। सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोह निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहा। भगत वचल पै का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरम पर ठाकुर मेरे रहा। एकत बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देव है सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया। तज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया। महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणे। अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे,

पूरी तई सिमर सिमर विदाता। सात संग नाम करंग मान्या, कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सातक नर थीवे। राम नाम हुआ रखवाड़ा, चक मारो सातक बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फास दले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दो पदे।

परम सोमत जित सी संपावो रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना चाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अटक कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांच पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से, अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी प्यारी सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल, दिन दिन छिजत विकार करत, औध फाही फाथा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विखम सागर अत पारी, उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, तम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया, कारज सतगुर आप सवारया। बड़ी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंत्रिण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नाम फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहाओ। साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल, आपे सतगुरु आपे प्रतपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुण गान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल काग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुरु पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे कृपार। नानक दास ता की सरनाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के ए औखद जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना ए पुर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन न थिया। जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, जो बालू कर बार,
बिनसत बार न लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए परबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो, लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अत कनी ते जियो हुम आगो, अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग तिसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न हो वही नह लागे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए। रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्द तेरा पार जम गुण नित तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दान से नह चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा निरप हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल प्रभु कीता, अंदले त्रिभुवन सूजिया गुर पेट पुनीता।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छर जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहा खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जब तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किच तुम ते मांगना वड पागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। लीलावन महला पंजवा, साथ संगत के बास में कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहाओ हर रस चाखल त्रापिया मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिरसना। शीतल शांत संतोष होए सब बूझी तृष्णा, दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हार राखिया पय प्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास के तब हुए न्याल, राज मिलक सुखदारिया अग्नि में जाल। संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पट खोई। साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत ऊते छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो, संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो। कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनपते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो। सत संतोष दया तरम शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर गाया। ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुष जन्माया परमाया, नानक तुस पत राशी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों विसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वड़ा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाय। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता।

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरह नानक जतै सत सत बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल पोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो, देव सुहनी साधके बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साज संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काड़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाय। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काकी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरपुर कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जापिए अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महा मंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा को कृपा करो प्रभु ताको लाओ से। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभु परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, सित पाई अनद भया।

रहाओ। सोवत हर जप जागया तोथिया बसमाद की अमृत तृप्तास्या तांका अचरज स्वाद। आप मुकत संगी करे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान

तर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मैला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैथर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस्तीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पन्नवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे,

चीत करता करे काम को काटे, कीरी ते हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर निरत। हम ते कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवां। खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना भला बसिया प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करकार पुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु।

सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होई है आरोग, रामचंद्र की लस्तुका जिन मारिया रोग। रहा गुरपूरा हर जापिय निक्की कै भोग, साध संगत कै वारण मिलिया संजोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या, सगला दुख गया, राखन हार राख्या, अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया, कीना अपनया, सिमर सुमर मन तन सुखी, नानक निर्भया, बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापिया, नाम

जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाय नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समाग है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है। राम नाम जो जम जप है, हम दिन सब जाग है, पंत मंत नह जोई सिर चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग है, आनंद मगन रस

में जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्वत्र में प्रभु गुणी गहीर नानक भगत आनंद में देख प्रभु की तीर बिलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभु हुए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बिलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभु किए पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव पूछ अपार अगणित हर सब जीव सहाथ नानक कर शरणागति जत तक मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा राजा होए कृपाल मार्ग संत बताया।

श्री कल भय राखे प्रभ आप, नान प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान, पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगट भय संसार।

सुन स्वामी अरदास जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकि भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतया जिन बंत मनाई, राम नाम और सब दिया एक।

हाकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजन मोह चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दिस पाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुरु मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन सिजय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई कल हमरे, तेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पति संग।

पर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपत अघाए तेज प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तै बिलसे कहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार ते मंदर रतन कोठली खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाय वढाई मगन पे उहा संग माचे ओत पोत लपटाई

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूरण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर कामना आते जासु राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारो, पावक तने जरावत है, ऐसे गर में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाड़े,

सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जो पहावत है। कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा पोत पोत अंग अंग संग मौ

पंते हुए सगल खरी। सत संतोष दया धर्म सुख संतन ते ए मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई। जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए। कह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभ। गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक पेटले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है। कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी पंद बंद अर सगल जंजारो। अवकाश ते छूट परी रहाओ सुख सहज हर कनो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी। देखो मोहन सब कै संगे ऊन न काहू सगल करी। पूरन पूर रहो कृपा निध कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता।

ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानक का राखा आप प्रभु स्वामी।

सुन परे करें करावे मुँह कर पावे देखत सुनत सदा संग हरे रहो काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होवन कौरा अनहोवन मीठा बिख्या में लपटाए जरे अंध कूप में परयो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे कहो नानक प्रभु हो दयारा गुर के तै काडे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा मन तन रसना हर चीना पै आनंदा मिटे अंदेसे सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ त्यानप ते सब पै स्यानप प्रभ मेरा दाना बीना हाप दे राख है अपने को काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर पारोस है कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुर पूरे मेरी राख ले अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहा निवरे दूत दुष्ट बैराई गुर पूरे का जपया जाप कहां करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप सिमर सिमर सिमर सुख

पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम, जरा मरा कछ दुख न व्याप है, आके दर्द है पूरन काम रहा, आप त्याग परिय हित करनी, गुर ते पाए हो निधान, जन्म मरण की कटिए फांसी, साची दरगह का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आहि, हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोल किस नाही रहाओ, कुल समूह उदरे छिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पाव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर पाके, नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहे रजंगा, कभु न बिसरहिए मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगे, सर्व जिला का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न ताची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ काज नहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत

आपे आप वर्त स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राख प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

दो में थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर पे खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो न हो वो दृष्ट गोचर, जी के संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी।

जन की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रवापे। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, करत विकार निष्फोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल पया मेरे पाई मीत रहा गरी बिराद उपाद सब नासी अंगीकार कियो करकार सांस सुख और अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को

दास अपने की आते राखी, तय पंजन ऊपर करते मान, तई मित्राई मिटी बुराई, दुष्ट दूत हर काडे छाण।

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

अनक भगत अनक जन तारे सुमरह अनक मुनि अंगले टिक निरकन तन पायो प्रभ नानक अनक।

उलझियो अलमकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे ते कह हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पहचानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जान।

जोग जग ने फल तुहे मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के।

है। ते नर जन्म अकार खोया, जहरा खो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत सुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जा को।

सब कोई कत कत बात करे दुख होई कत सहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे ओ सरजाल कट कट व्याप रहे।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख किया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंडाला, गुर के मुँह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधे।

आप न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

आप ते आप खाए हो में ते अम दिन हर रस बीत गवैया। गुरुमुख परचय कंचन काया निरपो ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया छिन पल रह न सकूं बिन नाम है।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न।

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवे तित अय्या। दासन दास दास हुए रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द

छिन में तिन तिन कह पैया। हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया। जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा सतगुर परचय मन।

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंतु पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडे।

औजात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई,

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगाइया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। खिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

या सतगुरु दया करे प्रभ मिले, मैं तुस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस वितों बल बल कुम गैया। अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया। गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन टील न पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया।

हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया। तब आन आन मेहंदी पिसाई, आपे कोल कोल अंग लिया, जिनको ठाकुर कृपा तारी, बहां पकड़ नानक कद

स्वामी पंच पूत बेताला, आप अगोचर पुरुष निराला, इक परम पूखे मोह प्यासे, इक रस चाखे सब तृप्ता से, इक रंग राते इक मरतूर, इक दर कर सा

गुरमत मेले भगत दिन लाए। खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पत पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सब संतोष शरीर, सात समुंद परे निर्मल नीर।

जोग दसवीं नाम दान इसनान अंदिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागे परम पौ पागे बिल

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौथे थावे ले पावे, राज तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवला।

आप गवाए नानक नाम रखो उद्धार देवन हारे कौ जयकार वीर वार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए।

आए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, कर्मे पूला आवे जाए, सतगुर सेवे सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर

मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब पिगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे साथ साथ निरंजनो, शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। जोत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अतारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। बिलावल मेला पहला मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे देख पवनी हठ ना जाना, नानका सच गह रहे। पिंगड़ी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूर कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे सात शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन सो जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार भी जय शब्द सी जय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वत्सल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जींदे ज्यो जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे वे खा लिया नानक हर लिवलाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्छा जे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यार है राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूरख मुगध मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाय।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभु अगम अथाह।

मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस पोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे वाजे अहमत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिवलागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे दिन स्रें उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया ते जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है गय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न ताए बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर गय पूजा गही कट जम की साफी राम गय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अधोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

और दीदी ना पावा, नानक स्वयं तय करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत पे का नाम मैं अंगले तोहनी, ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे। गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जोनी।

सगल जा को करना पत गतिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंगारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर सांप दयाल प्रभु सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभु चेते है नानक सुखी हो त्यो जियो। संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गई दुर्चारण रसना राम प्रभु भगत वचल नह सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा कृम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत नह डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सिमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस्त निवेड़े अप

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिवलाए। मैला तीजा सतगुर की सेव ना की किया, सबर ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर से जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गुहज गल जीव की चीक है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुर का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैज पथरिया गुर कहते सुवाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाए जा को नदर करे, मानस के देवते पे सच्ची पदक जिस दे, हों में मार मिलायन गुर कह शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा त्रिज ए आशा दूजे पाव की जो मोह माया चित लाए, हर्ष पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध ना होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक किन मरे।

किए। जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुर के वल है। तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुर अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो। जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर। हर आप रख लिए शोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वरते दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक सो जन पाई, सतगुरु से वो हो मैं मल जाई, अंदर संसार धूप व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी, जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर राम ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे प्रवाओ, श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंबिन नाम के आया, दिख्या माए उदास है हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण पुल्ले, हो मैं मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया।

बिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत खोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में एलाती जा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचों जाए। जो किस होए सो सहजे होए कहना किसु ना जाए। नानक तिनका

अंगन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंदन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो कुसै त्यो दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अकै कोई क्यों देवाए। इहो हर तन जोर कीता किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हत आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे के सीव बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

ना ए मारी ना मरे ना ए हट विकाए गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर

हो मैं अंदर सन साखत मुठे दुरमती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन दुस्ता सेती तिरहड़ी जंक्षो वाज करन नानक साखत नरक में जम बदे।

तिस सास गिरास सदा मन वसे, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसे, हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया, रस संत जना से।

तू दे रे, चलो तुम नतर को तक्का गई है रे रहाओ। बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जई है रे, मानस बपरा मूसा तीनो मीठ बिलैया खई है रे। तनवंता अर मिल तन मन ही पापी कछु न कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे। हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुर जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंगराता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी राह बिखे बिखे की बात ना तजिए न जाई।

अनेक जतन कर राखिया से फिर लपटाए। जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का, ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी बिलावल। नित पुट कोरी गागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो। हमारे कुल कौने राम के हो, जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव। सुनो जिठानी सुनो जिरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए। तुहे मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो। संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाकस नख बिदरयो। करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो। कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें ले उदरे हो बिलावल। को हर समान नहीं राजा, एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ। तेरो जन होए सोए सत डोले, तीन पवन पर छा जा। हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा। चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा। कह कबीर संसा परम क्यू को, रूप है लाद निवाजा बिलावल। राख लो हम ते बिगरी, सील कर्म जब पगत न कीनी। हो अभिमान तेड पगरी रहाओ, अमर जान संखी एक आया। ए लिखिया का की जगरी, जिन्हें निवाज साज हम किए। किसे विसार अवर लगरी, संगत तोए साध नहीं कहियो। शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए गिनती सुनियो। मत पालो जम की खबरी बिलावल। दरमा दे ठांडे दरबार, कुछ दिन सुर्ख करे को मेरी। दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ। तुम तन तनी उदार।

संसाधारी क्रम कै पाए पवे तेत पारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दही परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम सजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुरु साची जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप आपते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निध ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जाओ सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नर जा मन तोले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

बिलावल जे कुल साध जैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीप

पहला चौथा कर पहला जी मन चित आस रखे हर ऊपर का मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब व्यर्थ ही जाय रहा जो दिसे मा

सताए। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छड़ाए। जे कुछ आस

जिन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन्नत की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याय, जो खुन में किलित सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाय तह ना।

बहुत कदाचा। अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभु

तंग मित्र पाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुम उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जाको तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना इस जन की वडे आई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मोहे चरना।

हर अविनाशी सदा चिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

करिए। सो ऐसा हर शेर सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लिये। मेरे मन हर जप हर नित रहिए, हर दिन को मार जीवाल न साके। ता मेरे मन कायत करिए रहाओ, हर परपंच किया सब करते। विच आपे अपनी जोत तरिए, हर एक को बोले हर एक बुलाए। गुरपूरे हर एक दिखाइए, हर अंतर नाले बाहर नाले। कहो तिस पासों मन क्या चोरी है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा तेई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा ते आए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर कीर। हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन साम

पेखक करता, अदृष्टो करता, दृष्टो करता, उपत करता, परलो करता, व्यापत करता, अलिप्तो करता, वक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंख्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो कुछम भाई ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ अवाए ले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जाए ले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े हो कुटुंबाए ले, ज्यो पंखी कत्र होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाय ले, जैसे मीन रसन साध बिनस्यो।

आज बर्तन को सब कुछ भोजन पोगाए, सो प्रभु तज मूड़े कत जाए। पार ब्रह्म की लागो सेव, गुरते सुजय निरंजन देव रहाओ। जिनकी ये रंग अनेक प्रकार, ओ पत पर लो निमक मझार। जाकी गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए। आए न जावे नेचर तनी, बेअंत गुना ताके ते तक गने।

मिटय कोट अग नमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत कौन महला पंजवा नाम संग सीनु व्योहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही कित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट गुरु संग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगी जत कत जात नामो ही मन लागा मीठा जल थल सब में नामो गीता नामे दरगे।

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पंजवा। निमानी को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान। गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय। रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण। दियो पूछ ना मसलत करे जो किछ करे सो आपे करे। जा का अंक ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए। आप अकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार। नाम रंग पगप पहे लाल जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन। जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास। से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत। रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे। जाके उपदेश परम पौनस है। जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार। कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार। सर्व जिया का जाने पेयो कृपा निधान निरंजन देओ। पाल ब्रह्म जब पे कृपाल

गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाए पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता कावन लाग। गौण महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अभेयो, सर्व पूज चरण गुर सेयो। गुर

पुरख भगवान गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में गुर मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा। गुर पूरा ताये वड़ पागी, गुर की सेवा दुख ना लागी। गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए, गौन महला पंजवा। राम राम शंकर व्योहार, राम राम राम प्राण आधार। राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सब रहो समाए। संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

उतारे सबसे ऊंच राम परगास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्टि के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पद खोवे सात जना पद मल मल तोवे पंच फूट जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभु सार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभु लागी सह समाद थान कनंतर एको स्वामी।

प्रकाश भगत पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण महला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार काम क्रोध इस संते मार होए रही है सगल की रीना कट कट रमैया सब में चीना इन विद रमो गोपाल गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को यह सुहाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल हो।

जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार। गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक रास लिए गुरुदेव, प्रभ कृपा

ही कट कट अंतर सर्व समाही अपने दास का हल्क पल तुम्हारे पति पावन प्रभिर तुम्हारे औखद कोट सिमर गोविंद पंक मंत पजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांचित पूरन फल पाए कर्म कारण समरत दयार सर्व निधान महाविचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गौण महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत।

जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछान, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूर्ण मंत, हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौन महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत, मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ।

कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो, संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल, सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

पायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जाको राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक कै मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत नाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो शरण

हार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना एहो बिनसे ना एहो जाए, आज जुगा दी रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस शीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुण्य का इस लेप न लगे, कट कट अंतर सब ही जागे। तीन गुणा एक शक्ति उपाया, मां माया का की है छाया, अचल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गत मित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए, सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गौण अष्टपदिया मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सफल मूरत सफल जा की सेव, अंतर्जामी पुरख विदाता, आठ पैर नाम रंग राता, गुरु गोविंद गुरु।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता कह निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कह सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस

कालो साट हथ ना तोड़े तरे ध्यान वहां कह हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले ले नमस्कार है बूजी नहीं काजी अंधियार है तीन बार पतिया पर लीना। मन कठोर अजमूना पतीना कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई रहाओ। ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना तीख मंगासी ना इस पिंड ना रक्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती ना एहु तपा कहा वे शेख ना एहु जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत सोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागज पर मिटे नमंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई रहाओ। सुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे मुंडिया अंधन तापे जाहे। एक दो मंदर एक दो बात हमको साथर उनको खात। मूड पलोस कमर बद पोची।

सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर गौंड। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश।

हार शंख को बिख बिख संसार कर सीगार बह पखियारी संत की खिड़की फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिसका बोझ

जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाई है साधु बिन कैसे अवगत जाई है जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन से नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस दिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते को प्रबोदे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए नाम।

ओडै अन्न करे पाखंड ना सोहागन ना ओरंड जग में बक्ते दूधा तारी गुप्ती खावे वटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जान्या तन अनाद ठाकुर मन मान्या राग गौंड बाणी नाम देव जी।

तो न पुजे हर कीर्तना मा अपने रामे पजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख बेद चतुर परता सगल धर्म अछता गुर ज्ञान।

कर्म सहित रहता सिवा सकत संवादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पदनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वा को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा जो बिखई हेरे।

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा क्यों कह गीता, बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवाता हूँ कि गौंड जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश शिला पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब व्यथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवणी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़

जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू दे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व जोत तेरी पसर रही जय जय देखा कह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाड़िया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिद सागर तरिये जीवतियां नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे

आन पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ताकीरत आखा तामन सेव करे।

पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुरचेले की संग मिलाए जीठा दारू।

प्रापत पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सैकिया गल्ला दर किया बाता, तैता कहन कहाया, राम कली मेला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कौन बुझे दिख जाने, खुद खुद चलत आप कर चीने, आपे तक पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, किसते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गतमित और न जाने, गुरबिन समझ न होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में त्यान त्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला पहला, जहर प्रभ कृपा तारी, ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी, जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभ पावे, एन भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे, रहाओ, कुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया, सब नाग देद गुरबाणी, मन राता सारंग पानी, तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे, खुदया दुष्ट जले दुख आगे, गुरमत नहीं लीनी, गुरमत पत कोई।

पाए शब्द तृप्ता से रहाओ। पंच बैल गडिया देह तारी, राम कला निभे पथ सारी। तार टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार। गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी। भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंद जपे निरंकारी। सहज जगोता बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

जा कर पहला। सतयुग सच कहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तै रहे चार, गुरमुख बूझे को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेते इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम दोए।

गुरमुख नाम वखाणे कोई सब जुग में नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझे कोई हर नाम किया है भगत जन सोई नानक जुग जुग नाम वड़े।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी, हृदय प्रगास होवे लिव लागे। गुरमुख हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर मानक, बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया। पागहीन मन मुख नहीं लिया, तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा। हरनी की कथा सुनाए, गुरमत मेल गई सब निकल। सत्संगत मिल बुद पाए, राम जन गुरमत राम बोलाए। जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवर पाग होवे मुख मस्तक, हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के, पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे, नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की तैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी शरण आए। हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा, हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ। हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी, हृद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा, जे वड पाग होवे वड मेरे, जन मिलदियां तिल न लाइए। हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाइए। राम मोको हर जन कारे लाइए, हम पानी पखा पीसो संत आ गए। पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ। हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाइए। सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए। सतगुर शरण परे तिन पाया, ने ठाकुर लाज रखाइए। इक अपने स्वाये आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाद लगाइए। बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाइए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। राम करी महला चौथा, सतगुरु दया करो हर मेलो। मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुर चरणी। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया। मैं हर दिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया। रहाओ मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम, दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा,
सत गुरु दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उधारे जी दान गुरपूरे दिया हर अमृत नाम समारे राम गुरु हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रहाओ कोट कोट से किस्त्यावे ताका अंत न पावे पारे हृदय काम काम नी मांगे हृद मांगे हाथ पसारे हर जस जप जप वडा वडेरा गुरमुख रखो उरदारे जे वड पाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे हर जन निकट विकट हर जन है हर रास है कंठ जन तारे नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर प्रत पारे।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिख लिखिया तुर करते, हम कैसी किर्त कमाई, मन संसार किया।

छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो न कोई, सतगुरु मिलो नवे निड पावो, इन विद तत् बिलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजरे, किसो करो बुराई, सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया, तो उतरी सगल बेगनी, ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर

पासा जय अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी। रामकली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने। अचरज किस तैन न जाई।

असर मेरा अनित राज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दिल परवाओ रहत है स्वामी इक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्ण काई बाता तत्सार परम पद पाया छोड़ न कतू जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा।

चरण हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माफे वजह बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

हो रहे अभ्यापे एक सुर के एक ही सेवा एक गुर के जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा राम।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे चिंता नामे बत्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, त्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दिसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, और सोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले बीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लक बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा। राम करी महला पंजवा।

आज हमारे पूरे सतगुरु बाजे अनहद तूरे सतगुरु रहाओ मैं माजा की जहर गंभीर होए निहाल दे जिस पीर जाके बंधन काटे राए सोनर बौर ना जोनी पाए जाके अंतर प्रगटो आप ताको ना ही दुख संताप लाल रतन किस पाले पर्या सगल कुटुंब ओ जन ले करया ना कुछ परम ना दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जत कत देखो आप।

आप ना कमावे। पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ। आगे

नीते सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही करतार जिसे सहाय हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे की ताकौन कीरी जी तो सबला पवन बेअंत में माता की केतक बरन बल बल जाये ताके चरण तिन्ही किया जब तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल में परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पे परगा।

संत जनी परदास तया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन्हीं बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावें तें रोग सोग नहीं।

कीर्तन आधार, निर्चल आसन बेसुमार, दुगना डोले कतहु जावे, गुर प्रसाद को इहु मेल पावे, प्रमते मोह न माया जाले, सुन समाद प्रभु कृपाले, ताका अंत न पारावारे, आपे

संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मोहे कभू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गंभीर अप

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। रहाओ दिन हर सगल निरा

कर कर ठाके वडे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत कर

कन्या जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यों का ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

मन अटल ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद बिचारा बिन

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरु पूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान

इसे त्याग सतसंगत करे, वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व में पेख, पूरन पूर रहा प्रभ एक। रतन अमोल हृदय में जान, अपनी वस्त तू आप पच

नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किछु काज न कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप ताप

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

नानक कर्म प्राप्त होए। राम कली महला पंजवा, दुलभ देह सवारे जाए न दरगे हारे, हालत पलत तुद होए वड्याई, अंत की बेला ले चढ़ाई। राम के गुण गाओ हालत पलत हो है दो वै सुहेले, अचरज पुरख त्या

नानक सुख सहज समी जाय। राम कली मैला पन्नवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाए गुमान, जिसका तू किसका सब कोई तुसे अराध सदा सुख हो।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहि जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत। मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख।

हो पे गोविंद गुण गावते साध संग दुख जाए रहाओ। जा के राम बसे मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तर

के बैसंतर पागे, माटी को जल बैज त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

आई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के। जहाँ

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतो।

तीरथ परम सुजाद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्व गया।

वेश करे नटुआ जो मोह पाप में गलत गया इत उत माया देख पसारी मोह माया के मगन भया करें विकार विकार घनेरे सुरत शब्द दिन परम पया हो मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वो रोग गया सुख संपद को आवत देखे साकत मन अभिमान भया।

जोगी सह सब किसह मया आज पुरख अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए कोरो में किसे सुनावे पैसा गर असराल पया देख कुटंब माया गृह मंदिर सात जंजाल पराल पया जा आए ता तिने पठाए चाले तिने बुलाए लया।

गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सखाई राम कली मैला पहला औहठ हस्त मली कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख के ती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हों मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जाई पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी

करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते एहा भगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह है हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख योग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

तार न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए सुख सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे।

जी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें, गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन पेख करे जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग दिखम है जो

भगत खजाना गुरुमुख जाता, सत गुरु बूझ बुझाए, संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे, काम क्रोध विचों जाए, आप छोड़ नाम लिव लागी, ममता शब्द जलाई, जिसते उपजे तिसते बिन सह, अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी, बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे, पाखंड जोग न पाई।

से नाम नमन निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अदिष्ट लगाई, अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हों गुरसाला ही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाई, राम कली मेला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई, रहाओ हर दिन सब कुछ मेला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाना मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एक पूजा थाए पाई।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए, आपे निर्मल पूज कर आए गुरु सबदी खाए पाए, पूजा करें पर विद नहीं जाने दूजे पाए मन लाए, गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए, पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई, अपना आप न पछाणे संतो कूर करें वड्याई, पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप

खंजन मेरा प्रभु अंत सिखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसे

एक पेक करें फिरे अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन भगत करें दिन राती, राम नाम उधारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन भगत न हुई कभी, सह पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया।

माँ तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जाग।

की वडियाई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहया और न करना जाई। आपे साजे सिर्फ उपाय सिर सिर तंदे लाई, किसे सिरे वो तास पावो सब गुर मेल मिलाई। अपना आप आप उपाय अलख न लखना जाई, आपे मार्ग वाले आप।

तो जन सूझे जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रिया विस्माद, मेरा प्रभ रविया सर्वथा।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कहतो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्याई, किन्हि कया बहा बहु पाई, कोई कहे मैं तहे पसारा मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हि कुंगर नृत्य कराई, किन्हु वर्त ने माला।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावै पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, गिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

ठाकर को रख लियो चीता। जिन दिया तुद पवन अमोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन सरना।

नानक तां कै बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट को चूट जाका नाम सिमरत पौ जाए कैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल जत तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ जल पीवत ज्यों तुखा मितंत तन बिगसे गृह आवत संत लोभी का तन प्राण आधार क्यों हर जन हर हर नाम प्यार किसानी ज्यो राखे रखवाला मात पिता दया ज्यो बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए क्यों हर जन राखे

जो पावक संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत। जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के।

की कृपाई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाए पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नर

कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई एक अंकार निरंजन निरपो सब जल फल रहा।

आओ। खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कह न जाए संतो, चरण कमल क्यों लागो त्याना, साचे दर्श समाई संतो, गुण गावत गावत पै निहाला, हर सिमरत तृप्त अघाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कट आवे कट जाई संतो, आप जुगादी है भी होसी, सब दुनिया का सुखदाई संतो, आप बेअंत अंत नहीं पाये, पूर रहा सब थाई संतो, मीत साजन माल जो बन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम करी मेला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, उमन केर महा अत बिखरी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बार सूखा, हर जत मलन पै जुतारी, जिस ते लागे तिन्हें निवारे, प्रभ जियो अपनी कृपा धारी, उधरे

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नानी बोलना, समयो तिथि वालों ने एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना।

कर्म कमाए सहसे जीव मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्ष रहो चित लाए कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपज तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया ए पिछना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमानी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेवती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आप में समाले आप छाड़े सदा रहे परने गुरु बिन और न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के बेमुख होवे।

सब रतन है हीरा जित जराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपके हुक्म वर्ताए हुक्म वर्ताए आप वेख है गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो वे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो हो वे एक कस्यों लिवलाए कहने नानक आप करता आपसे हुक्म।

संसार क्रम सुत्ता सुखिया रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मनवस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विललाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा, सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कीते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चल।

हर मंगल गांव सती गृह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुरु चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुरु सब ज्ञानी हर नाम।

क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक जो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्ट होई, ए श्रवणो मेरे साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समानी, सच अलख विडानी ताकि गत कहीं न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए पावनी इतना दसवां द्वार दिखाया, कहे अनेक रूप नाव नवले किसका अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखते वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहेला साचे कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचे जिथे सदा सच प्यावे, सचो प्यावे जात रूपावे गुरमुख जिना बुझावे, एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावे।

हमारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर तार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कहे साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा।

गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजे मित बिगसे जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु परतख होंदे बहराज आप टिकाया, सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केशो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुरु शब्द सच निशान जियो।

मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया।

अनहद वाजे शब्द आगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याय सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिये।

इन ना विसारिय राम रामा राम रमा कंठ उर्धारिय उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक पंडार नाम

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

प्रभ रख को अंचल ता कै लाग जियो। पज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो।

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सातुद पावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई, हर नाम नव निध गृह परे, सिमर स्वामी अंतर जामे, कुल समूहा सब तरे, त्रय रंग जागे, नै छिद्र लागे, कृपाल

बिन मिल बे शांत ना उपजे, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए।

संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया।

आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त।

गर्ब गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करणी गुर विचार अगम अगोचर।

सोताओ, नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कहन ना जाई, खोजत खोजत अम

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवै न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जा

चार वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय दे खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

टंडोलत टूंडत हौ फिरी टह टह पवन करार फाहे टहते टह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनके हौ बल जाओ तिनकी तूर अकुली है संगत मेल मिलाओ मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारे जाओ जो उसारे सोटासी तिस बिन अवर न

दिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिए, गुर पर

वणते टूटत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुरु हास भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक।

जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार साउ सदाए संच तन।

रची मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कने करथा की सीगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाये।

सतगुर प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ। क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो।

इव पाये। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मन सा आसा शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर।

पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया, अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिख सो खोज लह, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सच जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कही है सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हौ मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब

जोग जुगत सत्य रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोक्ष द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इस नान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

कट कट पेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तारे मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन वन जारा।

गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहस्यान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाये सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किस को जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम

माने दूजा जाए इकत कालिया ने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते।

परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल

त्रिभुवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख असरूप सो एको, एको शब्द विडाणी, साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। कित कित विद जग उपजय पुरखा, कित कित दुख बिन सुजाई, हो मैं विच जग उपजय पुरखा, नाम विसरय दुख पाई। गुरमुख हो वै सो ज्ञान तत विचार, हो मैं शब्द जलाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, साचे रह समाए, नामे नाम रह बैरागी, साच रखिया उधारे। नानक बिन नावे जोग कदे न होवे, देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए, गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए, गुरमुख निज कर वासा होए, गुरमुख जोगी जुगत पछाणे, गुरमुख नानक एको जाने। बिन सतगुर सेवे जोग न होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई, बिन सतगुर पेटे

गया विलाए, ना किच बीजे ना उगवे, जो बक्से सो खाए। अम्ब ऐसे ती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकस्या जाए। नानक गुरमुख चलत है, वेखो लोका आए। लोक के वेखे बपुड़ा, जिसनो सो जी नाहे। जिस वेखा ले सो वेखे, जिस वस्या मन माहे। महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख पाए।

पर जम डंड है दूजे पाए पथ खोए, हर नाम कदे ना चेतियो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी सिफति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर सत्ती। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे पगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती। सब इको हुकुम वर्तदा मने सुख पाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। मैला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानई हों मैं छड़े न कोए, गुर प्रसादी हों मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए। पैका संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सहजे बिख पाव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईए जाको नदर करे पौड़ी, दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा। ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

तिसका पूजन नानका, विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे, उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ, सच्चा आप तखत सच्चा।

आवे तिव हर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे गणत कीनी आपे सृष्ट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सासत साजियन पाप कुण गणत गणिनी जिस बुझाए सो बुझसी सत्य शब्द पतिनी सब आपे आप वर्तदा।

पै तन छीन होए लोग रत विचों जाए ज्यो बैसंतर ताप सुध होए त्यो हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक ते जन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा राम कली राम मन वसिया ता बनिया सीगार गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया पगत भंडार परम गया ता जागया चूका ज्ञान अंधार तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार सदा रवे फिर अपना सो बावंती नार मन मुक्तिगार।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज कर वासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द।

पूजै सच, नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए, विण मन्ने कच नि कच महला तीजा। मनमुख बोल न जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार, ओए थाओ कुथा

ओए आप डूबे परनिंद का सगले कुल डोबेन, नानक जित ओए लाए तित लगे, ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी, सब नदरी अंदर रखदा जेती सिस्ट सब कीती, इक पूर्क फत लायन मनमुख विगूति, गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति, जिनको पोते पुन है तिन वापस पीती, नानक नाम ते आई है सच सिफत सनाई। श्लोक महला पहला सती।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तछावे दुख सहे, ना सत हक

कडवही तलबा फौसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आय तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे कुछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पग तीरा पे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवा पे सब किच हर का खेल है गुरमुख।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए। होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। अंधे एना आखियन जिन

कोई जिसे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गर कोट है सब दिसंतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्टि साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जानिया सच करती है सा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेते पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

लीता, सब किछ कर ही माए है बड़ पागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंगाया कट गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया।

मत सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्याइन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले। भगत सोन गुण गाव दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिला।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक तर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजोग।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस ताने, जिस तू आवे चित

सतगुरु सरवर रत्नी पर पूरे जिसनों प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुरु के हुक्म आवे रतन पदार्थ मानक सरवरे।

आप तरे आप तम सब तारे सबा सृष्ट छुड़ावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह

उतारोहा। व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूड़ा, मन लागा तुस्मोहा, ठग ऐसे ठग रल आया, साथ दे इको जेहा, सतगुर सराफ।

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक इतरी ताविया मन दर्शन की प्यास चरण दासाविया शोभा बनी सिगार खसम जा रहा।

रत्ना पौड़ी। जिस कै मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा। लगा रंग चरणार बिंद,

तीर्थ बर्त नियम सुख संयमे रव सस गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मले ए रस मनु आरा तोरे कहे कभी।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई, साधु हुए सो भगत पछाने।

लागे। जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण विसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे। राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा।

दया कर बारी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन इक निमक ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर मन पर तन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन, इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

मंदर सोवे पटंबर तान, सेज सुखाली बिगसै जियो, सो सिमरन तू अंगन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझको है नमाए। सिमर सिमर हर हर मन गाये, एहो सिमरन सतगुर ते पाये। सदा सदा सिमर दिन रात।

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नप सिख यो मन कीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ।

आसा जब कुंभक पर पुरलीना तह बाजे अनहद बीना बक्ते बक सब सुनाया सुनते सुन मन बसाया।

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीहत हों रे पाई। निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल से बर पाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

आकाश मदे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजै। अफबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित कीजै। आत्म जो निर्माइल कीजै आप बराबर कंचन दीजै। राम नाम सर तौ न पूजै मने न कीजै रोष जमे न दीजै दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवै नामा।

अनपौ पाओ न दर्शे। लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारसे ना परसे। देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया में।

सतगुरु प्रसाद इरा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तिथाई संतो तहां

तहे बाजे शब्द अनाहद बाणी तहे चंद ना सूरज पौन ना पानी साची जागी गुरमुख जानी उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे अमृत रस गगनंतर बीजे एस कला जो जाने पेओ एते पास परम गुरुदेओ दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की काटी ऊपर हाथ हाथ पर आला आले पीतल थाती जागत रहे सुख।

कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास खरे रहाओ। हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे। किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वड पागी हर नाम त्यावे, हर के पगत हरे। इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे।

पचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सब तमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिगसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दे आयो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बस

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वद ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभ ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

मिल सल ले सलल समणे जो प्रभु किया सो तुम ही जानो हम नहीं जानी हर गहने हम बारिक कौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पही निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये।

अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सुख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

दास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधार्यो आस पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसार्यो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचार्यो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवार्यो महा बिखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतार्यो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहार्यो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा चरण

पूरन पूर्व है कृपा निज कट कट दुष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

हर पज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत हो है पुनीत नानक दास बल बल कीत नट

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे।

क्या बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्तारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लैकू

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभ खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनू मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुबजा को, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम शंकर मार बिदारे, मान

किछ ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी कड कूप कड पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे। अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे। बन बन टूट

कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया फावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान।

संगत परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिवारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखा।

विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन कीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तरा।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुलिवित पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो, रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्रभु मस्त के तुरली किया गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगन बाजया हर मिलियो मंगल गायो, पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालियें जो लोन जलें गलायो, मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा रहो, कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा, मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर कापे, दंड धर्म राय का लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे।

नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाओ जा कै सिमरन मिटे तंद जा कै सिमरन छूटे बंद जा कै सिमरन मूरख चतुर जा कै सिमरन कुल्हे उदर जा कै सिमरन पौ दुख हरे जा कै सिमरन अपदा टरे जा कै सिमरन मुच्चत पाप जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे किरखें बरस मेघ, जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास, जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाध तुही, ऊंच मूचो बहु अपार, सिमरत नानक तरे।

नैन दर्श पे खोन स्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

हजूर, करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे।

तत्पाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा कर्म जाके दीवान बे मोहताज नहीं किच कान सब किच करना अपन आप रे मन मेरे तू ताको जाप साध संगत को हो बलिहार जास मिल हो वै उधार नाम संग मन तन्हे रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा मैला पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना जियो पिंड तान रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाये जीवने का मूल रव रया सर्वत ठाए सुख मोह स्थूल आल जाल विकार तज सब हर गुना नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किछ अंत नाही पार रहाओ एक खिने थाप उथापदा कर पन करने हार जेत कीन उपार जना प्रभ दान दे दातार हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊंच अगम मुरार कड लेहो पौजल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वचल सदा सदा कृपाल रहाओ आद अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहा सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा।

तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई।

स्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा कोठा कुर को दासा रे।

नानक शरण तुहारिया देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

दुखे माए, सुख थोड़े दुख अगले, दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े, मिलिया का क्या मेल, साहिब सो सलाही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग, विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पैला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड्याई, मिल माया सुरत गवाई।

ना कोई किछ खा जाए किछ तर जाए जे बाहुर दुनिया आए सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन।

करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

कमाए हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए तो देवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको अवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना

बिन कहो किने परमगत पाए। पणत नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है।

गहो जार ले अमर गहो मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जाय मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जाय मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस नह कंद चीज है मारू मैला पैला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनिया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत भी

एमन ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एहो कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरबचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पैला कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद एहनिस जागे नींद न सोवे सो जाने जिस वेदन होवे प्रेम के कान लगे तन पीतर वैद के जाने कारी जियो जिसनु साचा सिखती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का वापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर।

आप में ख्याली जम पुर फासेगा जम जाली हेत के बंधन तोड़ न साके ता जम करे खुआरी जियो ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुरु दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू मैला तीजा कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद जय बैसा ले तय बैसा स्वामी जय पे जय तय जावा सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देह बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा राव बुरा पला किस आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे विनाशी ज्योतिष पाणा सो सतकर मान्या काटी जम की फांसी पणत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर के शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हाथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर्व आप्या जमपुर चोटा खाए नानक सब किच आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जाननी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सालाही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू

सत गुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भक्ति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया। मेरे मन नाम जपत करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा देह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे विच बिस्ता मन।

हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा समाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सत गुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौं अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बे संतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, दे तार अर देवा डर पे। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे, अत डर पे धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो। जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे, हर नाखस नखें।

आयो साम नानक ओट हर की लीजै पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्त न वित्त प्रमयो बहु पांते अनक जत

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुक्ते सुन कर गा।

सहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घरख नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग ले जा रहे हो, मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करें हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ, असाद रोग उपजो तन पीतर, तरत न काहू तारे हो, प्रभ विसरत महा दुख पायो, एहु नानक तत विचारे हो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा के वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था। अनपौ अचरज रूप प्रपेखिया मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चो आया था। टोट नाही मन तृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने।

सत थान सच बैठता सच स्वाव बनाया सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया मारू मेला पंजवा।

रूप रंग खुशियां मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्याय।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

दी गढ़ है, एक सुखने दाम न छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया, होए अवतूत।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो।

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मा

जात के केला। हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

उठ उठ फिर पावे मन तन बासना बहुत विस्थारा अंगमेव मूठो बेचारा अनेक दुख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत।

जिसको होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बिगारण, जिस पारे तिस ही निस्तारण, अंधकूप के काडन हारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारिया, माँ अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह कावो।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर।

वो सेवा मारू महला पन्नवा तत्त उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय है। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय है। मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यह ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू मेला पंजवा कर छेवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियानपा मिल साध त्याग गुमान और सब कुछ मिथ्या।

ओ बिना तै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते एहने, मेरे मन नाम

सूलत में हर भगत दृढ़ मेरे साध नानक तेरे काम आवत ओहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बसो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभू न हार मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम

नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो नीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सूर सगले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खसम छड़ाए लया। विच्चों गर्भे निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न कितनी खाए बया। मेरवा रख लयन आपे, जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया।

तुमरो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण अदा।

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो, गनकाहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको पयो सहाई। कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई। मारू मैला नावा अब मैं कहा करो री माई, सगल जन्म विक्रम से खोया, सिमरियो नायक नाई रहाओ। काल फांस जब घर में मेली, ते सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट में, को अब हो सहाई। जो संपत अपनी कर मानी, छिन में पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जग सब न गाई। मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो राव। जम को दंड पड़ो सिर ऊपर, तब सोवत कह जाग्यो। कहा होत अब कह पछताए, छूटत नाहीं भाग्यो। एक चिंता उपजी कट में जब, गुर चरणन अनुरागियो। सुफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस में पाग्यो। मारू अच्छा।

देखा, असर तीरथ बहु कहा प्रम था के देखा, साचो साहिब निर्मलो मन माने एका, तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी, नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ। हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा, गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा, अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा, जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना, गुरमति जद मथी है अमृत पाये नाम निदाना, मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना, हूं मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार, गुर कै सबदे जे मरे फिर मरे न दूजी वार, गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार, सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा, लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा, दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा, साची संगत थान सचे सच्चे करवारा, सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम आधारा, सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा, रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा, मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा, मानस दात न हो वही तू दाता सारा, अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा, गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा, नानक मेल न चूकई साके वापारा, मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार, कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल, बाबा जग पाथा मा जाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ, सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए, आवा गौण निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजय सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस, पूर्व लिखिया पाये किसनो दी जय दोस, गुरमुख गारण जे सुने मन्ने नाव संतोख, मागर मच्छ पाये कुंडी जाल बताए, गुरमत फाथा पाये फिर पछोताए, जम्मन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए, हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए, जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए, तंदे तामत जग बांदिया ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार, गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार, गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार, मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ, जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ, मारे राखे एक तू दीजो नाई थाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन, नाम बिना को कछ नहीं गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम

अमन वसै से बांधे दुख सहाय, जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे सुख नहीं गाडे लादे चार, विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार, अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए, पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए, साजन देखा ता गल मिला साच पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख, खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे, बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे, नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप, जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू धूप, गीत साध चा

नानक नाम ना विसरे, जो तिस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, इहो मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या, साचे कर साचे रखे गुरबचन सुवाख्या। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तर

हुकम लाला मने ए करनी सार गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे की रह तेहो मन अवगुण बांधया सो दे शरीर है पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहा जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ कीता क्या साला ये कर देखे सोई जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई सो साचा साला ये साची पत होई पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुद आ जा

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर तांतिये पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेटी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद परंतया मूठी गिन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द नाची ने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द नाचीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत को है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले जय दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विचों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रहे तामस नाम जलाए तन गिरही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए।

आप निराश रहे सन्यासी, एक क्यों लिवलाए, हर रस्ती वे ता सांत आवे, निज कर ताड़ी लाए, मनवाना डोले गुरमुख बूझे, तावत वर्ज रहाए, गृहो शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नाम रते विचारी, खानी बाणी गगन पताली, जनता जो तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी,

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अपरयो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दात संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे ना पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दोख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुर बाद जीवन होर मरना दिन गुर सब दे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो सिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जा को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की।

तो सौ रंग रवंत सबे रुत्ति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुति निस देहो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकमी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रभ नाल ना हम चंगे आखिए

जिसनो नगर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्टि जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुर के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे।

कार्तिजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपतायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या तू उर्जायो रहाओ। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो। जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम।

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुवाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा बहुविध बे

चौर टालिए जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया संग ना कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड वजे सा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देश लम्मे जिनकी तात से ना जानी अंदा ता दुख सह प्राणिया खालक था वो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल

है। आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच खच करने कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना जोदी सह तुझ माए समाना नानक नीच पिखिया दर जाते है मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला आपे तरती तौल आकाशं आपे साचे गुण प्रगातं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है।

कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दिसे नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा काशी कांती पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अगली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई सबसे दाता तिल ना तमाई। परपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार साचे सिर जनहार मुरार। जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार उबे सेवे अलख अपार।

गए बाजीगर जो निस सुपने पखलाई है तिनको तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिव लाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभुवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साथ मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हौ मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जी है क्यों सुख पावे दुए पी है निर्मल एक निरंजन दाता गुर पूरे ते पत पाई है जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट गही सुख पाया मन तन मैल न काई है जीव रसायन साच

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुरपुरा गुर का शब्द मने सोसूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचे अवाई है। मनमुख कदे ना

कर्म तर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ सब सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब चीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सह समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे।

लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगे पैदे गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बित्रे दुख पाई है भोजन साच मिले।

एक हठ कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार ना जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन्न न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त ना होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम ना जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाच कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ये बड़ाई है। जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, इह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूर कबाड़ा, कूर मारे काल उछावाड़ा, साकत पूर पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पराई, पर पड़ दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हौं मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पड़ पड़ अगन सागर देले।

ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है ना ही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मे आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तख्त सो शब्द विचारे, तत लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यो तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीत न दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्ध त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

काली हुफुन तौले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मुठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन सीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आँख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई साच शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सत तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगह मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजै, पौन पानी बैसंतर गाजै, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसा

84 नरक साकत पोगाये, जैसा की कह तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

कनेरे नरक पते अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजै दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अग्न बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुर्ग अवतारा।

थाकत माया को बहुतावे, नाम विसार कहां सुख पावे, त्रिगुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है, कूकर सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है, राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सत गुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत्व मिल काया कीनी, किसमें राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए।

आपा मन सा बंद चलाया, मेरी मेरी कर्क क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है, हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है, हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती, नानक राम नाम।

तुम्हारी, तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवा गुप्त रहाता है, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला, सातत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिवराता है, अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पी जय शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक सिकी जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करें बेताले।

जुग चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बांधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिल लावे जो कुंडी मीन पर आता है साकत फांसी पड़े अकेला जम वस किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुरु बाज न बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलल सलल मिलाता है फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है गुर की पगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश न जाने सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन एनत निर्मल ज्योत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता है ओजन ज्ञान महारस मीठा जिन चाख्या तिन दर्शन जीठा दर्शन देख मिले बैरागी मन मन सामार समाता है सतगुर सेवे से प्रधाना तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजे जिन सतगुर हर प्रभ जाता है मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे जिन कर चतर तरे विचारे आपे करता कर

अच परास है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब सलाह है। सुन सुन आख है कीर्ति बाणी, सुन कही है को अंत न जानी, जा को अलख लिखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, तीर्थ पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए,

तन पल्लै शब्द सचै ओ माहा हे। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे। पूंजी साबत रात सलामत।

दुख में मरना, दुख न मिटे बिन गुर की सरना, दुखी उपजे दुखी दिन से, क्या ले आया क्या ले जाहा है, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जमतारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहा है, हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा, और न दूजा कहा है, और न कथने सिर्फ सजा।

का कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती तुद अंदर देखे आप बैठ बिजमंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फेर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, तुरों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पच्छो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मैला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेस नहीं।

पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पलती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ लह अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुर मिले मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाय दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत तत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा। सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्म ने मुख माया है त्रैगुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा। सुनो सपत पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएंदा।

गुरमुख समझे रोग न होई। हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुरु पुरुष निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा।

अंदर जुगत समाई रहे निरालम राया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सब संतोष शब्द अक्षीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवरताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत।

सिया आत्म राम पाए सुखतिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना किस भूख प्यास मन मान्या सर्व निरंजन कट कट जान्या अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुवाया अध्यात्म कर्म करे दिन राती निर्मल ज्योत निरंतर जाती सब दिर साल रसन रस रसना बेन रसाल बजाया बेन रसाल बजावे सोई जाकी त्रिभुवन सोजी होई नानक बूजो ए विद गुरमत हर राम नाम लिवलाया ऐसे जन विरले संसारे गुर शब्द विचारे रह निरारे आप तरह संगत कुल तारे तिन सफल जन्म जग आया कर दर मंदर जाने सोई जिस पूरे गुर ते सोजी होई काया गर महल मैली प्रभ साचा सच साचा तख्त रचाया चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी सेवक पंच नाही बिचाखी अंतर वस्त अनूप निर्मोलक गुर मिले हर तन पाया तख्त बह तख्त की लायक पंच समाये गुरमत पायक आज जुगादी है भी होसी सहसा परम चुकाया तख्त सलाम होवे दिन राती क्यों साथ वडाई गुरमत लिव जाती नानक राम जपो तर तारी हर अंत सखाई पाया मारू मैला पहला हर तन संचो रे जन पाई सतगुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर ना लागे ताको तुन उपजे शब्द जगाया तू एकंकार निरालम राजा तू आप सवारे जन के काजा अमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंचलोक वसें प्रदान।

पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना अगल करे गुरु ज्ञान समाना काम क्रोध ले गर्दन मारे हो मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसे निरंकारा आप पछाने सब विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आप

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हम में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथे देखे अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुर मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत ले हो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत ले हो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत ले हो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के फाहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया।

हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, ऐनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभ तारे, सत कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दी जय, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन ते तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ये पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनक चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुर जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बार सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सत गुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर से वो संत न की जय, आशा माए निराश रही जय, संसार दुख बिना सन से वो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडी आए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्त है, नानक हर गुर पाया, वाचे है पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तक

पथ में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग ना पाये बिन सतगुर अलख ना पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम ना जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पखंड तरम प्रीत नहीं।

है संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुरु बूझ बुझाई है, सतगुरु सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुरु अपना सभी सेवे, हो मैं विच्चों जाई है, गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कसकस लूझे, सतगुरु सेवे की वड्याई, कृष्णा फूख गवाई है, आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मेटे तुर फुरमाया।

नानक दास कह बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख गिरला बूझै कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आपे, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुरबिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का दाता, हो मैं मार तृष्णा अग्र निवारी, सबद चीन सुख होई है, काया कुटुंब।

एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलियावट पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है, गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक सब जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रसता कह सच सोई है, हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है, बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हों मैं शब्दे खोई है, आपे गुण

पाए सुवाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँक है जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे

मन देखो लिव लाई है। जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी।

सुफी का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की जूठी जूठ कमावे फिर का साव न जाने मूरख बिन गुर बूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल

आपे हुक्म करे सब वेख इकना बख्श ले तुर लेख अंगन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख बिन सतगुर बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाए है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे सतगुर सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे नह पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कही है जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यों पावे तें चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता इक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाही गुर प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुर सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा सतम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे ना करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बस ले सुख पाए सभी नाम निवासी है तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वन जब अपारा सच तन जमया कोट ना आवे अंतर नाम निवासी है हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बस ले नाम दी जय गुरमुख हो वै सो पत पाए इकत नाम निवासी है अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख हो वै सो तन पाए सभी नाम निवासी है अनलवाओ परम पुलाई माया मोह सुध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न समाले अंत विगूते पर निंदा करे बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव

मन मुख ना बूझे फिर आणी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदिन आर जा छी जहे अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जम काल ना सूझे ऐठे कमाना सो अग्गे आया अंत काल क्या की जहे जो सच लागे।

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मारथ दा सुख पाया, नाए साचे अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किछ आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांप सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे। अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे। वेद बाद सब आंख वखाणे, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाणे। पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे। आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा।

सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जहाँ सुध पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह

तार कमाई जो मेरे प्रभ पाई, हों मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हों मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवै सच त्यावे, सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी, अंदिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है। हों मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया।

महला तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नाम डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक को

आपे करता सब जिस करना, जी जंक सब तेरी सरना, आपे गुप्त वर्ते सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत परे पंडारा, आपे बखे शब्द विचारा, जो तुद भाव है सोई करते, सच्चे से मन राता है, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नदरी तोले तोलो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है, माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा, गुरमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आ गए, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विकाटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर से ती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण ने

मेरा ठाक रहा है। गुण अवगुण का एको दाता गुरुमुख वीर ली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा आपे मिले गुरु शब्द विचारा। आपे बक्से सच दृढ़ाए मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा गुरुमत बूझे कर विचारा। हों मैं मार सदा मन निर्मल रसना से सुख दाता है। गर काया अंदर बहु हट बजारा तिस विच नाम है अत अपारा। गुर के शब्द सदा दर्शो है हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा कीमत कवन करे बेचारा। गुर के शब्दे तोल तोलाए अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा माया मोह पसरिया पासारा। मूर्ख परे शब्द न बूझे गुरमुख वीर ले जाता है। आपे करता करे कराए सच्ची बाणी सच दृढ़ाए। नानक नाम मिले वड्याई जुग जुग एको जाता है। मारू महला तीजा को सच सेवियो सृजन हारा सबदे दुख निवारण हारा। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई आपे अगम असहा है। आपे सच्चा सत वरताए एक जन सच है आपे लाए। साचो सेवे साच कमावे नामे सच समाहा है। तुर पगता मेले आप मिलाए सच्ची पगती आपे लाए। साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्मे का लाहा है। गुरुमुख वणज करें पर आप पछाणे एक बिन को अवर न जाने। सच्चा साव सच्चे वन जारे पूंजी नाम विसाहा है। आपे साजे श्रिष्ट उपाए विरले को गुर शब्द बुझाए। सतगुर सेवे से जन साचे काटे जम का फाहा है। पन्ने करे सवारे साजे माया मोह दूजे जंत पाजे। मन मुख फिरे सदा अंध कमावे जम का जेवड़ा गल फाहा है। आपे बख्शे गुर सेवा लाए गुरमती नाम मन वसाए। अंधिर नाम त्याए साचा इस जग में नामो लाहा है। आपे सच्चा सच्ची नाई गुरमुख देवे मन वसाए। जिन मन वस्या से जन सो है तिन सिर चूका कहा है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुर प्रसादी मन वसाए। सदा शब्द सलाही गुण दाता लेखा कोई न मंगे ताहा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र किसकी सेवा अंत न पावे अलख वेवा। जिनको नजर करे तू अपनी गुरमुख अलख लखाहा है। पूरे सतगुर सो जी पाई एको नाम मन वसाई। नाम जपी ते नाम त्याई महल पाए गुण गाहा है। सेवक सेवे मन हुक्म अपारा मन मुख हुक्म न जाने सारा। हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई हुक्मे वे परवाहा है। गुर प्रसादी हुक्म पछाने तावत राखे इकत।

सबद सला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रविया कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता शब्दे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के पै की सार न जाने।

अप्रियो जम मारिया ना जाई, गुर के शब्द नेड़ ना आई, शब्द सुने ता दूरों पागे, मत मारे हर जियो वे परवाह है, हर जियो की है सब फिरकारा, एहो जम क्या करे विचारा, हुक्मी बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा सहा है, गुरमुख साचे किया आकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा, गुरमुख होवे सो सच बूझे, शब्द सच्चे सुख ताहा है, गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुगचारे गुर शब्द पछाता, गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है, गुरमुख नाम शब्द साला है, अगम अगोचर वे

सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है। गुरमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरमुख सदा रहे रंग राते अंदिन लेन दे लाहा है। गुरमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे। अंदिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा सब सुनाए।

सच्चै सबद सदा गुण गाए, गुण दाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब दे सेवै सो जंत्रापे, अनदिन सेवै सच्ची बाणी, सबद सच्चै ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हट कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कह शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर कह शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, सिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अन दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल बिछोड़े नाही, गुर कै शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथि अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभाहा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे से

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसे कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमलवास मन ताहा है, शब्दे अकप तफे साला है, मेरे प्रभु साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया तो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभु तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तक

पूरे गुरते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमुख सील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निध नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रईयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सतगुरु दुआरे, होमे क्रोध शब्द निवारे, सतगुरु सेव सदा सुख पाये, सील संतोख सब ताहा है, हाँ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

कारज न होवे, संयोग वियोग करते लिख पाए, कीर्तना चले चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हास्यो सद ही रह समाए, गुर कृपा से मिले वड्याई, होमे रोग ना ताहा है, रस रस खाए पिंड वधाए, एक करे गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी, बिस्ता माए समाहा है, वेद पढ़े पढ़ बाद वखाने, कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने, गुरमुख होवे सो तत बिलोवे, रसना हर रस्ता है, सार वस छोड़े बाहर तावे, मन मुख अंधे साध न पावे, अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल न ताहा है, मन मुख देही परम पतारो, दुर्मत मरे नित होए खुआरो, काम क्रोध मन दूजे लाया, सुपने सुख न ताहा है, कंचन देही शब्द पतारो, आम दिन पोग पोगे हर्षों प्यारो, महला अंदर गैर महल पाए, पाना बुझ समाहा है, आपे देवे देवन हारा, किस आगे नहीं किसे का चारा, आपे बक्के शब्द

गुरमुख सच्चो सच वखाणे, गुरमुख सच्चे वै सच्चो सच्चा, गुरमुख सबक सुनाएदा, गुरमुख हो वै सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरमुख सच संजम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरमुख हो वै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए, अपने पाने सदा रंग

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कबू न टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जांच से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

गुरमुख देवे शब्द पछाणे, नानक दास कहे बेनंती। सच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा, आद जुगाद दया पत दाता, पूरे गुर कह शब्द पछाता। तुदनो सेवै से तुझे समावै, तू आपे मेल मिलाएंदा, अगम अगोचर की।

कोई सबना सार करे सुखदाता, आपे रिज पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा, कोई न जाने तेरा परवारा, अपना आप पछाने आपे गुरमति आप बुझाएंदा, पाताल पुरिया लो अकारा। इस विश्व वर्ते हुक्म करारा।

मत देहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा चीज दी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंग ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा।

लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विचवासा, बिस्ता विच कृपाए दा, कर्म होवे गुर भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवें चलाए दा, सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाए दा, सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेखे, गुरमुख आप बुझाए दा, सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अदम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाए दा, आप निराल मोहर तंदे लोई, गुर प्रसादी बूझे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमती मेल मिलाएंदा, मारू महला तीजा, जुग शक्ति कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा,

सहसा मूल न चुके विकारा गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए सच्चे सच समाए दा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाए दा जप तप संजम नाम प्यारा किलविख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल होवा सहजे सह समाए दा अंतर लोभ मन मैले मल लाए मैले कर्म करे दुख पाए कूड़ो कूड़ करे वा पारा कूड़ बोल दुख पाए दा निर्मल बाणी को मन वसाए गुर प्रसादी सहसा जाए गुर कै पाणे चले दिन राती नाम चेत सुख पाए दा आप सिरंदा सच्चा सोई आप उपाय खपाए सोई गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे मिल साचे सुख पाए दा अनेक जतन करे इंद्री वसना होई काम क्रोध जले सब कोई सतगुरु से

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सकते कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किछ करे सो नहचो होई, जिस बिन दाता वरना कोई, जिसनो नाम दान

पीजै रसना नाम से आए रस पीजै रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाए सदा सुख

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नामे नो लोचे जेती सब आई, नाव सिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, किस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

दिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच

मेरे साथ सुख पाएगा। सोचे तेज आप चिताए, गुर कै शब्द वसै मन आए। आपे वेखे आपे बूझे, आपे आप समाएगा। जिन मन विच वथ पाई सोई जाने, गुर कै शब्द आप पछा।

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया ना जाए, मन मुख फूले मोए बिलाए, जिनको नजर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम से आए दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

पुत्र इस बाणी ते हर नाम पाएगा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेत बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा। गुरमुख एक स्यो लिवलाए, त्रिविध मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जानदे बिलम न लाएगा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बनत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, अन दिन सदा हर भगती राते, इस जग में लाहा पाया, तेरे गुण कहां मैं कहन न जाई, अंत न पारा, कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, इस जग में मोह है पसारा, मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौं मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को होआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुर शब्दी मेल तोलाया, सेवक सेवे करें अरदास, तू आपे मेल बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जत सत संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

तर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भक्ति राता, सच्चे स्यों चित लाया। हऊ मैं विच सब जले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए।

हारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो फसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माहे समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे।

ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया, ए वड्याई गुरते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटया सूर निस्मिटया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा, सतगुर ज्ञान रतन अतपारी, कर्म मिले सुख पाई है। गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए, नाम में नाम रते सुख पाया, नाम रहा लिव लाई है। गुरुमुख नाम प्राप्त होवे, सहजे जागे सहजे सोवे, गुरुमुख नाम समाई समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी, हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई।

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन अवर न कोई दाता, हर तिसे श्रे वो प्राणी है, जा को राख है।

हर हर नाम जिन्ही सदा ते आया, तिन्ही गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। जन नानक दास।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख है पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म तर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

वचन दे छोड़ ना जा साहे। फिर कया हों हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कान न चंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदा साहे। जो प्रह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

सिद्ध साधिक बनवासी जाचे जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचक दे दान सृष्टि जाहे करहे भगत अर रंग अपारा खिन मैं थाप उठा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन भगती जाहे जिस देहे दर्श सोई।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फासे, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक साथ संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरु पूरे, नाम अमृत पी पाना है, गुरु की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे सो

गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत स्यों जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योत सैंति आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा, जो जल तरंग

हर सो किछ करे जे हर के आसन ता भावे, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर ना कोई पाएंदा, जिथे औकट आए बनत है प्राणी, तिथे हर त्याय सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा, वड्डा साहिब अगमा थाहा, क्यों मिलिए प्रभे परवाहा, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाए दा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे

दूजी अवर न जापस काई, सगल तुम्हारी तारणा आप चितारे अपना किया, आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा, आपे कट कट सारणा, एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा, सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा अपारा, ऊने परे परे पर ऊ

प्रपा से आनंद मंगल हर चल तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चल तुम्हारा।

पूजै सतगुर साहु भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायणा जा की तूर करे पुनीता सुर नर देव न पावे मीता सतपुरख सतगुर परमेसर जिस पेटत पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन सीत लाएना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुर मुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहो रलाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरों पीसों संत आ गए, चरण तोए सुख पाए।

परम रुणा गुर का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भाग है सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन साध

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही रतनागर अगै अगा किछ मित नहीं पाई है।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों सेवक।

खाओ अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा पीत पीतंबर त्रिभवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत न आवे सरबंगा नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपग्गा पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पवखंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा निरंकार अचल अडोलो।

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फाना।

तिन की तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। तिन के संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का। साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई। काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश।

सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते। तू समरथ वडाल का मारू मेला पंजवा, इको अंकार सतगुर प्रसाद। चरण कमल हृदय नित भारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आ गए, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौनिद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

राती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वड पागी बौर न जोनी पावना जिसनो बिसरे पुरख विधाता जलता फिरे रहे नित ताता अकिरत कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए, सोई होए जे करते भावे, कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहना जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई।

जे सतगुरु माहि समाए मैला तीजा, मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है, जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए, गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुर शब्दी कमल विकासिया।

मनमाय समाना, हर जियो का महल पाया सच लाए ते आना, जिन गुरु प्रसादी मन जीतिया जग तिन्हे जिताना। श्लोक महला तीजा, जोगी होवा जग पवा कर कर पीखिया ले ओ, दरगह लेखा मंगी है किस किस उत्तर दे ओ, पिखिया नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल, पेखी हाथ ना लदिया सब बदी जमकाल, नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल। मैला तीजा, जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवियो ना कोए, ऐसा सतगुर लोड लहो जिस जेवड अवर न कोए, तिस शरण आई छूटी है लेखा मंगे न कोए, सच दृढ़ आए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए, नानक सच्चे हुक्म मने सच्ची वड्याई दे, सच्चे माहि समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी, सूरे ए ना आखिए अंकार मरे दुख पावे, अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे, अत क्रोध स्यों लूज दे अगे पिछे दुख पावे, हर जियो अंकार

नानक जे इव मारिए गुरसबदी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे शांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे ठिन में मार पछा।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्यों विच नव निद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोई महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया

तहे जममग ना पावे, हर नाम ते आवे दिन सरात, हर नाम समावे। श्लोक महला पहला। सुनिए एक वखाणी है सुर्ग मृत पयाल।

तुम मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले।

सब दी जापे। हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे। जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस्त्रा पे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे। श्लोक मैला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी।

कहलाती जा। गुण अवगुण समान है जे आपकी ते करतार, नानक हुकुम मने सुख पाई है गुर सब जी विचार पौड़ी, अंदर राजा तक

सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ। श्लोक मैला पहला। हूँ मैं करी ता तू नाही, तू हो मैं हूँ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ये अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत न पाये अलख वसे सब माहे। सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसे मन माहे। आप गया प्रम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाइए उत्तम मत तराहे। नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन तिसे समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार। से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार। नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल विखम संसार पौड़ी। मनमुख अंदर न पालनी मुठे अहमते चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत न सोदनी मनमुख विगुते बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसे तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच सच सब धारिया गुरमुख की।

न लगै तृण। जिस होमै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण। तू होर तू पाय न लभई अब नासे सृष्ट करण। दखणे महला पंजवा जे तू वत्तै अंगणे हब धरत सुहावी होए। हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछै कोई।

आपके सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपके खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देव गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किस वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम।

शिव सकत वरताइया, शिव अग्गै शक्ति हारिया, एवै हर पाइया, इक विच्चों ही तुद रखिया, जो सतसंग मिलाइया, जल विच्चों बिंब उठा लियो, जल माए समाइया, दखने

जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौकुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबै पापै, जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जानै आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना, जित ढाडी तृपतावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी को मंगन चित न आवे।

मन तन अत गुलाल, नानक बिन लावै आलू दिया, जिते होर ख्याल पवड़ी। हर जियो जा तू मेरा मित्र है, ता क्या मैं काड़ा, जिन्नी ठगी जग ठगया, से तुद मार निवाड़ा। गुर भौजन पार लंघाया, जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रियां वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा। जित लाइयन तित लगदिया, नै खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुर अंदर वाड़ा।

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाए का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कथे विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

दया धर्म तप ने चलो जिस कर्म लिखादा नेचल मस्तक लेख लिखया सो टल ना टलादा नेचल संगत साध जन बचन नेचल गुर सादा जिनको पूरब लिखया तिन सदा सदा आरादा श्लोक डखने महला पंजवा जो दुबंदो आप सो तराए किन खे तारे निरो भी तार नानक फिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथे कोई कथन नाओ सुनंदो मापिरे मुँह जुलाऊ तथ नानक फिरी पसंदो हरे उठियो महला पंजवा मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र सने नानक।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ज्ञानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब पर लै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सै

वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्म राम रहो, जटा भस्म लेपन।

राम उदग दे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

उदक समुद्र सरल की साख्या नदी तरंग समावेंगे। सुन सुन मिलया समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसै का हुक्म बुझ समावेंगे। रहाओ जब चूके पंच धात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ध्यावेंगे। जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे। हर

तारण करण तवे लग चाहिए जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल पय घटी मैं कह सभी मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण। काहे की जत है मन पावन जब जम आए केस ते पकड़े

पै अनुभव होए बना हम बै सौ अदूर देख ता पौ पवे बैरागी अड़े हुक्म बूझे ता निर्भो होए बना हम बै।

हर मुकत चारे सिद मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भीकण अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय दे धर्यो। नामा कह भगत बस के सब अज हूँ बल के द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बिसार्यो रे दीवाने दीन बिसार्यो रे। पेट भर्यो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हार्यो रहा। साध संगत कब हो नहीं कीनी रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे भटकत चाल्यो ऊठ।

आज काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम बुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की गए कागज जो गल जाएगा, जो जम आए

चार पदार्थ अष्टमा सिद नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी प्रभ मन करम सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सा सोहा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निष्बास रंग रावे। नाने प्रिय प्रिय चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने। घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हो बलहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किसके रा हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे बहे पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाए। हर स्यों प्रीत बनी हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे। धन उबी गुण सारी घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे। नानक बरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वै साग बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे सुद बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हर का मैल पछाना। नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

सावन सर्प मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर परदेश सिधाए, फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए, सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए, हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे, नानक सा सोहागन चंते फिर कै अंक समावे, बादो परम भूली पर जो बन पछतानी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग मानी, बरसे निज काली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रिय प्रिय चवै बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते, मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है, मानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाई है, असुन आओ फिरा साधन झूर मुई, सामिली है प्रभु मेले दूजे पाए हुई, झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहां से फुले, आगे काम पिछे ऋतु जाडा देश चलत मन डोले, दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा, नानक सुन मिलो प्यारे सतगुर पए बसीठा, कतर किरत पया जो प्रभु पाया, दीपक सहज बल तत जलाया, दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो, धन ओ मा है सरसी, अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामरसी, नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा, नानक मिलो कबड़ दर खोलो एक घड़ी खतमासा, मंगर माओ भला हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे, नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया, ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया, गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे, नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति तिर आगे, भूख तुखार पड़े वर्ण तृण रसुख है, आवत की नाही मंतन वसे मुखे, मंतन रव रहा जग जीवन गुर सब धी रंग मानी, अंडर जीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी, दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो पीत स्नेहो, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा, गंग जमुन तै बेनी संगम सात समुन्द समावा, पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता, फल्गुन मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया, मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ बहुते वेत करे फिर बाजो, मैली दान खाओ हार डोर रस पाठ पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी, वेद स्मारुती छिट्टी वार भले घड़ी मूर्त पर साचे आए सहज मिले, प्रभु मिले प्यारे कारज सारे करता सब विद जाने, जिन सिंगारी तिसे प्यारी।

वैच वह सवाया अपरम्पर आपे थापो थापे तिस भाव सो हो वै नानक हीरा हीरा बेदया गुण कह हार परो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिसै साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समाने आराम बहु साधु लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

जब लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हौ सतगुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर होए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम। प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दीजै मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुर गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुर नाव बिख पव जल तारी है राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारी है राम। हम मूड मुग्ध किस मित नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा। बिखम पौ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया। तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार। हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया। सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे। सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके। हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई। बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा नावन पुरब अभीच गुर सतगुर दर्श पया। दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिन से हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। आन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थिओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा एक ओंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाए। ठाकुर तेरा महल अपारा, सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट देख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी तिरके ताई, ज्यो चात्रिक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका। केदारा महला चौथा, कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद। मेरे मन राम नाम नित गाविये रे, अगम अगोचर न जाई। हर लख्या गुर पूरा मिले लखाविये रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविये रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविये रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविये रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविये रे। हर नाम अरादे से तन जन कहिए, तिन मस्तक पाग सुर लिख पाविये रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यो सुत मिल मात दल लाविये रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मौको देहो मति जित हर पाविये रे। ज्यो बछरा देख गऊ सुख माने, त्यो नानक हर गल लाविये रे। केदारा महला चौथा, कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजे हर गोष्ठ साधु स्यो गोष्ठ। हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, एहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। किदारा महला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बितरी प्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। किदारा महला पंजवा, कर कीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद। दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल। रहाओ अनिक जतन गवन करो, हट कर्म जुगत ध्यान करो।
उपाव सगल कर हारयो, नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते, पाव हरण हर हर हर हरे, केक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर, लग संतना पग पाल, केदारा महला पंजवा, कर चौथा इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद, सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान, नानक कौ हर कै रंग रागो, चरण कमल संग त्यान, केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरुष प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरुष विधाते, कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

थात सरण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात खिलारा मैला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी चिदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते लै मोर गर्भ कुंट में जिने तारे हो नहीं बिखे बन में होर।

सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस प्राप्त होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली रहाओ गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं।

उस तत निंदा दो विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया प्रम चूका चितवत आत्म रामा।

तो बन गया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पनारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझे। हर रस पावे भाई जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले तामन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे अनित जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी जात पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

आओ भगत च्यो काज न कछुए, मेरो काम दीवान राम विसार्यो है अभिमान। कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान, रहाओ लाल से झूठ बिकार महामद के बिद औध बिहान। कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान, चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए, कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारथ जाए। राग केदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार। सतगुर प्रसाद खत कर्म कुल संयुक्त है, हर भगत हृदय नाहे, चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कै देख, किस जात ते कह पदे अमरियो राम भगत विशेख। रहाओ स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत, लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे इको।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस दियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना साथ शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो साच शब्द बिन कब होना छूटस बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रब जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची।

त्रै गुण है माया, अंधलो तंग कमाई, खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूने, शब्द विचार राम रस चाख्या, नानक साच पति ने पैरों महला पहला, गुर के संग रह दिन राती, राम रसन रंग राता, अवर न जानस शब्द पछाणस, अंतर जान पछाता, सोजन ऐसा मैं मन पावे, आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे रहाओ, अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो, कट कट अंतर सर्व निरंतर, रव रहा सच वेशो, साच रते सच अमृत जेवा, मिथ्या मैल नाराई, निर्मल नाम अमृत रस चाख्या, शब्द रते पच पाई, गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई, सगले दुख मिटे गुर सेवा, नानक नाम सखाई, पैरों महला पहला, हृदय नाम सर्व तन तारण, गुर प्रसादी पाइये, अमर पदार्थ ते किरतार्थ, सहज ज्ञान लिवलाइये, मन रे राम भगत चितलाइये, गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज सेती कर जाइये रहाओ, परम तेज पाओ कभो न छूटस, आवत जात न जानी, बिन हर नाम को मुक्त न पावस, डूब मुए बिन पानी, तंदा करत सगली पत खोवस, परम न मिटस गवारा, बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी, अंधले तंद पसारा, अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मुआ, अंतर बाहर एक को जानिया, नानक अवर न दुआ, पैरों मैला पहला, जगन होम पुन तप पूजा, दे दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुक्त न पावत, मुक्त नाम गुरमुख लह, राम नाम बिन बिसे जग जन्मा, बिख खावे बिख बोली बोले, बिन नावे नेफल मर प्रवना, राव पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे, दंड कमंडल शिखा सूत तोती, तीरथ गवन अप प्रमन करे, राम नाम बिन सांत ना आवे, जप हर हर नाम सोपार परे, जटा मुकुट तन पखम लगाई, बस्तर छोड़ तन नगन भया, राम नाम बिन तृप्त ना आवे, किरत के बांधे पेख पया, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सर्व जिया, गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देखो ब्राह्मण होई, जात का गर्व न कर मूर्ख गावारा। इस गर्व से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई, पैरों मैला तीजा, जोगी ग्रही पंडित पेख तारी।

आचा फल पाई रे जन कैसे करो पुकारा। हुक्मे होआ हुक्मे वरतारा, रहाओ एहो अकार तेरा है तारा।

छिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए, पैरों महला तीजा।

तिरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों में लाती जा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निद

चार हुक्म बुद्ध समान कर्म होवे गुर कृपा करे यह मन जागे इस मन की दुविधा मरे मन का स्वभाव सदा बैरागी सब में बसे अतीत अनुरागी कहत नानक जो जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ पैरो महला तीजा राम नाम जगत निस्तारा पव जल पार उतारण हारा गुर प्रसादी हर नाम समाल सद ही निभे तेरे नाल रहाओ नाम ना चे

गुरु मिलाए, नानक हृदय नाम वसाए, पैरों महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिना प्राप्त होए, हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वडियाई दे रहाओ, राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदारण हार, बिन नामे मनमुख जमपुर जाए, औखे होवे चोटा खाए, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए, पैरों महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द विचारे, हर जियो अपनी कृपा धार, गुरमुख नाम में लगे प्यार रहाओ, अंतर प्रीत पगत साथी होए, पूरे गुर में लावा होए, निज कर वसे सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसे मन आए, आपे वेखे वेखन हार, नानक नाम रखो उधार, पैरों महला तीजा, कल युग में राम नाम उधार, बिन नामे माथे पावे चार, राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ, राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुर से प्राप्त होए, हर का पाना मन्ने से जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, सो से वो जो कल रहा तार, नानक गुरमुख नाम प्यार, पैरों महला तीजा, कल युग में बहु कर्म कमाए, नारुत ना कर्म थाए पाहे, कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ, तन मन खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चितलाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहा ते लोए, कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई, पैरों महला तीजा कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद, दुबदा मनमुख रोग व्यापे, कृष्णा जलें अधिकाई, मर मर जम्मे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा दियो बुझाई, हों मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्दे रोग न जाई रहाओ, सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रैगुण सबे रोग व्यापे, ममता सुरत गवाई, इक आपे काढ़ ले प्रभ आपे, गुर सेवा प्रभ लाए।

दुख विचकार कमाए, गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्ता माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम न पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए, नामे नाम मिले वडियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर पोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार, से जन निर्मल जो

पूरे पाग पाई है, जिनी राम नाम सितलाया पैरों महला तीजा। शब्द बिचारे सोजन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, ता तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

कबहु कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत पी तृप्ता ते रहाओ आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

ताए नानक हर भगत प्राप्त होए ज्योति जोत समाए पैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना फूला चोटा खाए मर मर जमे सदा दुख पाए डर की खबर न पाए मेरे मन सदा रहो।

औचित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिशा भूख अत बहुती पौकत फिरे दरबार गुर के शब्द मरे फिर जीवे तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राख्या उदार ज्योतिष भावे तिवे चलावे करना तुसु न जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वड्याई पैरों महला तीजा हो मैं माया मोह खुआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन सहसार राम नाम सुख

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हरनाथ से नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा आपे दैंत लाए, दिते संत जना को आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख न होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने मूल

गुरु उपदेश सब दुख पर हरे, मेरे मन हर पज नाम नर हरे, कर कृपा मेलो गुरपुरा, सत संगत संग सिंध।

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुज नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक पारो नगर निहाली, पैरो महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझ तो बाहर कोई ना है, हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राखिया भावे तुझते नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा।

नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जाने। पैरो महला पंजवा, आगे दे पाछे नारायण, मद पाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभु लिए मिलाए, नानक प्रभु शरणागत आए। पैरों महला पंजवा, कोट मनोरथ।

जीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम, राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार, नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खत्म।

तो खुद खसम मेहरबान, अलो ना विसरे दिल जी प्राण। पैरों महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सत कर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवो। हर हर हर हर

हर जप जप उभरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखे नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप समाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौक दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री कर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु।

विरहाओ। ठाकुर चोर दासी को सिमरे, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, सात कहते मेरा। अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप कहे शरणाई, गुरमुख नानक जगत कराया। कहरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड

मैला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिकसन कै नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

जन नानक अपर न साचे कोय, पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौ करिए जे दूजा करता, तौ करिए जे अन्याय को मरता, तौ करिए जे तुझ जाने नाही, क्या करिए जा भरपूर समाही। तौ करिए

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुर दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गया।

वासन रोग पवर विनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटह न जावे, पार ब्रह्म जिसकी नी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी। हम सुख पाया ता सदै सुहेले, गुरु पूरे पिता संग मेले।

नानक उदरे नाम पुने चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, गुरु मन दी जय ता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत

पाधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संतार।

बेसुआ पजत किसने शरमावे, सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारे, राच रहा बिरथा व्योहार राओ, एक माया रह।

पूरन होत ना कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर

का स्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभु कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते से ही प्रधान नानक जा कै नाम विधान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए।

फिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विख्या का

नानक आया सो परवान। पैरों महला पंजवा संत की निंदा जोनी पवना, संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख साम, दान दैत निंदक को जाम, संत संग करें जो बाद, तिन निंदक नाही किसाद, रहाओ।

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मूर मुग्ध हो चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर के काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे नृत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरो महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए।

अगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो, तीरथ नाए कहां सुत सैल। मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंधन का मूल। हर के भजन बिन

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुरु प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैंत आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिधमाय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर देव चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रब की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पे

तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिये नाम के रंग गुण गावे नानक साथ संग मुक्त पुगत जुगत वस जाके ऊना नाही किस जनता के कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास से जन तन पैरों मेला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित पय बिनसी सब चिंद तय प्रम बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आ।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं पढ़ो अचार।

प्रहलाद के कारज हर आप दिखाया, भगता का बोल आगे आया, देवकुली लक्ष्मी को करें जयकार, माता नरसिंह का रूप निवार, लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

सुरत न पाए, मन मुख मरे तिन किछु न सूजे, दुर्मत अज्ञान अंधारा, पव जल पार न पावे कभी, डूब मोए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मिलाए, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे लिवलाए, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिन

कहो नानक तत्ते तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय।

क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्तर है, समुद्र कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूड़ कुट

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलों पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना, कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे, राम कहे करताल बजावे, चटिया सब

जो गुरुदेव तसीस आकाश, जो गुरुदेव सदा साबास, जो गुरुदेव सदा बैरागी, जो गुरुदेव पर निंदा त्यागी, जो गुरुदेव

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, तर्म फुल फल ज्ञान, पथ प्राप्त छाव कणी, चूका मन अभिमान, अखी कुदरत कन्नी बाणी, मुख आखण सच नाम।

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुरु नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा, गुर प्रसाद को पाव।

फाल्ग राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला,

जीवत मरे आन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए।

गे हर नाम दियो मस्तक वड पागे पौन पानी की ए दे शरीरा हों मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुरु रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारे तृष्णा जलत जले अंकारे गुर

मनमुख मोए नाही हर मन माहे, मर मर जमे पी मर जाहे, से जन जीवे जिन हर मन माहे, साथ समाले साथ समाए राव, हर ना सेवे ते हर ते दूर, दिसंतर पवे सिर पावे तूर, हर आपे जन लिए लाए, तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

दूर गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चै पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे

सोई करे जे हर जीव भावे, सदा सुख शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखे सद हजूर, सावकणी फूली बन राए, गुरमुख बिगते सहज सुभाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए, बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे, एक पोचे तै फिर जून ना आवे, सफल जन्म इस जग में आया, सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ, तिस जन की है साची बाणी, गुर कै शब्द जग माए समाणी, चहो जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट हो।

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साच समाए, साचा से वो साच पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पत होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाए, मनमुख अंधे ठौर न पाए, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मने सो जन प्रवान, गुर के शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर

पल्ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुर सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप वसै।

मन शांत न होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

टूट तिना की अकुलिय पाए, सब संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए। राग बसंत मेला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत, त्यों कट कट रमैया ओत पोत, एको हर रविया सर्व थाए, गुर सब दी मिलिए मेरी माए। रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिए एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर, एको एक वर्ते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत मेला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरो अंक सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे। रहाओ मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर निम लागे, जन्म मरण दो दुख पागे, भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिले।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जपियो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पा

बेनंती जन नानक शरण पवी दे बसंत हिंडोल मैला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवे दिल कर नहीं वाता पाई है बुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो कर मंदर आन वसाई है गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है हूं मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाई है रहाओ कर रतन लाल बहु मानक लादे मन प्रमिया लह न सकाई है ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे त्यो सतगुर वस्त लहाई है जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाई है मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है बसंत हिंडोल मेला चौथा आवन जान पया दुख बिख्या दे मन मुख सुन्जी सुन्य राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकरे काल सुलुंज गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज राव सत संगत साध दया कर मेलो शरणागत साधु पंज हम डूब दे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज हर उस्तत तार और

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्स पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसे स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला पंजवा, तुम बरदाते दे रहे, जी प्राण में रव रहे, दीने सगले पोजन खान, मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

तरों टेक सर्व कला प्रभु तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से पनी जिन तू सेव्या सुखी से संत शरण नानक।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवां, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरत स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभु तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभु लेहे।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाठ करत तू सदा संग, निकट पेख

जत नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किर्त ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

संगत तब कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल पर गास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप बालक राखे अपने कर थाप सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ सोग संताप कटे प्रभ आप गुर अपने को नित नित जाप जो जन तेरा जपे नाओ सब फल पाए नहीं चल गुण गाओ।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कथूले।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंतकाल न लागे पीर रहाओ, परम तरम तुम चौपड़ साजो।

उल्लंघा वह मेरा सतगुरु सुख सहज से थी कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरुमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया।

तेरा है भाणा, कहो नानक टह तया द्वारे, रख ले वो मुग्ध अजाना, बसंत हिंडोल मैला पन्नवा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहं मनी, पिता पार।

जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

आधार गुरु सबदी बिक प्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तो है नानक ठाडे चाहे।

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मान्या सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया। बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणों मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सच

आपे खट खट रग रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूले।

गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुर करतार, गुर के चाकर

तू अकल निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

करेंगे कर कर सिर्फ तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी संभाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है।

आशा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजामल उदरिया कह एक बार बाल्मीकि कह हुआ साध संग त्रू को मिलया।

गनका उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदिक उदार्यो खंपर हार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहा।

दो संसार मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके कीने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

हर का नाम ती आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न ताई, पंजे बदे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहे नाम से आएदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव सह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माधो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद सब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जारे पाच वर्ग पचीसक संग काच नौ बैया दस गुण आहे कसन बेहतर लागी पाहे मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज जिन कटे मूल नित बदे।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जय जिस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी के इको अंकार सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पवे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

कते त्रुट चुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंच नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

आप बसे मन आए, गुरु कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पई हर प्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गा।

हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन हर

सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर हर।

पर भवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन, हर हर अमृत नाम चपासी जो जन सेवे सब सदा मेरा हर हरे, तिनका सब दुख परम पौजासी।

आन उपाव न को सूजे हरदा सा सरणी पर रहा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा। सार महला पंजवा माई पीर रही प्रे बहुत विरागी।